क्या इनके पास बादशाही का कुछ हिस्सा है? उस सूरत में तो ये लोगों को तिल बराबर भी न देंगे, या जो अल्लाह ने लोगों को अपने फजल से दे रखा है उसका हसद करते हैं। तो हमने खानदान इब्राहिम को किताब और दानाई अता फरमाई थी और सल्तनत अजीम भी बख्शी थी, फिर लोगों में से किसी ने तो उस किताब को माना और कोई उससे रुका रहा, तो उन न मानने वालों के लिए दोजख की जलती हुई आग काफी है। जिन लोगों ने हमारी आयतों से कुफ्र किया उनको हम अनकरीब आग में दाखिल करेंगे, जब कभी उनकी खालें गल जाएंगी तो हम उनको और खालें बदल कर देंगे ताकि हमेशा अजाब का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, वहां उनके लिए पाक बीबियां हैं और उनको हम घने साए में दाखिल करेंगे।

0: भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको पहले ये हुक्म दिया गया था कि अपने हाथों को जंग से रोके रहो और नमाज पढ़ते और जकात देते रहो। फिर जब उन पर जिहाद फर्ज कर दिया गया तो बाज लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे जैसे अल्लाह से डरा करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा, और कहने लगे कि ए अल्लाह, तूने हम पर जिहाद जल्द क्यों फर्ज कर दिया? थोड़ी मुद्दत और हमें क्यों मोहलत न दी? ए पैगंबर, इनसे कह दो कि दुनिया का फायदा बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी चीज तो परहेजगार के लिए नजात आखिरत है, और तुम पर धागे बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ए जिहाद से डरने वालों, तुम कहीं रहो, मौत तो तुम्हें आकर रहेगी, खा मजबूत कलों में रहो। और इन लोगों को अगर कोई फायदा पहुंचता है तो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई मुसीबत पहुंचती है तो ए पैगंबर, तुमसे कहते हैं कि ये आपकी वजह से हमें पहुंची है। कह दो कि रंज राहत सब अल्लाह ही की तरफ से है। इन लोगों को क्या हो गया है कि बात भी नहीं समझ सकते?
1: अल्लाह, ऐ हमारे रब, ऐ कौनो मकान के मालिक, हम तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, हम पर करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे बुजुर्गों ने तेरे नाम और तेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं के लिए बर्रे सगीर में इस सरजमीन के लिए बाबाए कौम कायदे आजम की कयादत में बेहिसाब कुर्बानियां दी हैं। हमारी इस सरजमीन पाक को कयामत तक आबाद रखना। ऐ अल्लाह, हमें नफरतों की आग से बचा ले, हमें बाहमी मोहब्बत और खुलूस की दौलत अता फरमा, हमारी गलतियों को माफ फरमा। हम अपने गुनाहों से तौबा मांगते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, पूरा मुल्क, खास तौर पर ये मासूम बच्चे तेरी बारगाह रहमत में दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल इस सरजमीन पाक को आने वाली नस्लों के लिए महफूज और मुबारक कर दे। ऐ अल्लाह, इन मासूम बच्चों की दुआओं के तुफैल हमारे मुल्क को अमन का गहवारा बना दे। ऐ अल्लाह, दुश्मनों के शर से हमें महफूज रख। हमारा ये परचम, हमारा ये प्यारा परचम इज्जत और कामरानी के साथ रहती दुनिया तक सरबलंद रखियो। ऐ अल्लाह, अपने रहम करम से और अपने फजल से इस सरजमीन पाक को मादनियात और कुदरती वसाइल से मालामाल फरमा दे। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के हर शहरी का दिल तासुब, गिरोहबंदी और फिरका परस्ती के घिनौने ख्यालात से पाक हो, और वो हर फिरके और हर तबके के भाइयों के साथ मोहब्बत और आश्ती और अमन सुकून के साथ रहे। ऐ अल्लाह, हम सबको हलाल की रोजी हासिल करने की तौफीक अता।
0: आमीन।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka. Maal tayar hai, truck khada hai, mazdoor khade hain. Bas ek cheez ka intezar hai. Payment. Karobar chalane ke liye sirf saman nahi, reliable banking bhi chahiye hoti hai. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. Isliye mere paas hai Bank Al Habib ka Al Habib Current Plus Account. Jisme mile फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर निमाज खां इशा जे निमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0359-0300-88-5569।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
2: न अदा
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836
6: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-15-5-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

अमेरिका एक भेरो बीहर ईरान ते हमला शुरू करे छड़िया। तेहरान फारस सूबे के शेजरे आए बंदर अब्बास कशम गरगान बंदरगाह हेंगम मिनाब आए सेरक ते बमबारी पर डई खबरू इदारे मौजूब अमेरिका पारा ईरान ते वे पैमाने की बमबारी शुरू कई वही है। वेड़ाक जहाजन ए मिजाइलन वसीले स्ट्रेट के खनन के निशानों बनाया पे वे। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में दिफाई फिजाई निजाम मोहतरक। अमरीकी जंगवारे वजीर पेट हेक सचिया वायद अस हाँ बमबारी वसीले ईरान से गालू कदी। ईरान से अज रात थल हमला सफारती पोजिशन के बेहतर बढ़ाई। ईरान के कें भी सूरत में एटमी हथियार हासिल कर नींदी। अब नखरमस जो कंट्रोल भी अमरीका वट ही होंद। अज रात ईरान के अहम स्ट्रेटिक हनन के तबाह किया वो। इन भेरे हमला सख्त ए वाजे होंदा।

0: दादू जे कच्चे वारे इलाके केटी केड़ा जतोई में घटी जे मामले तां लाल जितां जेड़ो मरी ब्राजे बेंद्रन में जेड़ो फायरिंग में बजना कतल ब जख्मी थी पिया माजी वलन में इमामदीन मरी साबर जतोई शामिल एसएसपी मूजिब लाश खणण वारी सूरतहाल ते ज़ाब्ते लाइ मुख़्तलिफ़ थाणनि जे नफ़री इलाके में उमाणी वई आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-3883-8556-9।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।
7: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1558-724।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 10:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Maal tayar hai, truck khada hai, mazdoor khade hain. Bas ek cheez ka intezar hai. Payment. Karobar chalane ke liye sirf saman nahi, reliable banking bhi chahiye hoti hai. Business karna aasan nahi, lekin business ke liye bank account reliable hona chahiye. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
4: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: चलते हैं। रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000002734, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहिक वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर, डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
5: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1557-724
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

अमरीकी हमलन बाद ईरान आबना हुर्मज मुकम्मल तौर से बंद कर छो। अमरीका खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत बहरीन इराक में अमरीकी फौजी अडन से हमला। पासदरान इनकलाब चाहिए कुवैत के अलील इस्लाम बहरीन में अहमद अल जाबरात अडे इराक में अरबिल फौजी अडे के निशानो बनाया है। मिजाइल और ड्रोन हमलों को पेरों मरेलो मुकम्मल चुको है। दुश्मन बीहर अग्राही कई जवाब पेरे का सख्त हों। अपने हुर्मज में अमरीकी फौज और पासदरान इनकलाब विच में चक्रों का सिलसिलो जारी है। ईरानी मीडिया मूजिब अपने हुर्मज में जो अमरीकी जंगी बेड़न के मिजाइल और ड्रोन से निशानो बनाया।

दादू जे कच्चे वारे इलाके खेड़ा जतोई में घिटीअ जे मामले तां झेड़ो जतोई ऐं मरीबा जे बिंदड़ में झेड़ो थियो। फायरिंग में ॿ ॼणा क़तल, ॿ ज़ख़्मी थी पिया। मार्जिवलन में इमामदीन मरी ऐं सावर जतोई शामिल। एस एस पी मौजिब लाश खणण सूरत हाल ते ज़ाब्ते लाइ मुख़्तलिफ़ थाणनि जे नफ़री इलाक़े में उमाणी वई आहे।

0: कश्मीर भरिसां हथियारबंदनि घर आॾो बीठल नौजवान खे क़तल करे छॾियो। कचेवारी इलाइक़े में हथियारबंदनि नौजवान रहमतुल्ला मज़ारी खे फायरिंग करे क़तल कयो। लाज ज़रूरी कार्रवाई बाद वारसनि हवाले।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।
5: खुशखबरी खुशखबरी, हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383 85569 0300338 5569।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुजे दुकान जी बेड हरंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
9: 0301-399-2836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाबा है।
1: हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, रेडियो FM 88, और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहां जहां भी मौजूद हैं, बिल्कुल टिप-टॉप से कूल साउंड, एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहां जहां भी मौजूद हैं, बिल्कुल मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टिल 1 पीएम आपका और मेरा साथ होता है, और ये खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ आज भी जारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रयाग में अगर हम सबसे पहले वक्त की बात करते हैं तो 11:18 पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, तमाम लोगों की घड़ियों में बज रहा है, और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शा में हैं, कार में हैं, बाइक पे हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं, आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी, बट एट द नेवर, अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफर भी खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कल खुदा खैरियत।

इसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, जो लोग लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए. और इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शोबारों, शहरों और शराहों, वादियों और पहाड़ों, दरियाओं और मरगुजारों, घरों और बाजारों, छोटी बड़ी कारों, मेरे बरसारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है. तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को दिल से कहेंगे मरहबन बेगम, अहलन वसहलन, मरहबा, बखैर आ गए, जी आया नू, सन बिस्मिल्लाह, बोंजोर जाओ, नी हाओ एंड वेलकम इन टू जिंदगी गुजार है. प्यार प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, और वो सारी बातें जो कि आप प्रोग्राम में मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें आपसे करेंगे. लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

ओके जी, प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीका कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज होगा GFM88 और मेरे ख्याल से शायद अभी तक वहां पे पोस्ट अपडेट नहीं की गई. मैं चेक कर लेती हूँ, अगर तो की गई है देन हम उसको ओपन कर लेते हैं. हाँ जी, पोस्ट आ चुकी है. पोस्ट को आप देखेंगे, पेज के ऊपर होगी जिंदगी गुलजार है की पोस्ट, जो कि आपको नजर आ जाएगी. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? और कमेंट्स को ड्रॉप करने के साथ साथ इसको शेयर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसी के साथ हम चलेंगे नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, और नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने के बाद हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के जाने. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है, क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टैचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: जी कौन बात कर रहे हैं?
0: शहर मकसूदुरी गांव खान से कामरान अली रिंद तुम्हारा भाई।
1: ओके कामरान अली रिंद, कैसे ठीक ठाक?
0: रब्बा के नखला करम है, तुम बहनों की दुआएं हैं।
1: गाना सुनाएंगी?
0: जी आज कमल ने मेरा लिखा है आपने।
1: ओके सुना दें।
0: मौला करे तुझे भलो हो बेवफा, मोटाए दे मुख चलो हो बेवफा। मौला करे तुझे भलो माते दुरो हम अला हाथ क्या थई, मुखा पे है कर यार मिला थई। माते दुरो हम अला हाथ क्या थई, मुखा पे है कर यार मिला थई। माँ बल उरो तुआ पलो मौला करे तुझे
1: पलो। तो मैं चलाऊंगी क्या
0: जी?
1: सारा आप ही सुना देंगे तो मैं चलाऊंगी क्या?
0: तुमने कहा कि सुनाओ तो मैं सुनूंगा।
1: अच्छा सिंगर सिंगर कौन है इस गाने का?
0: शमन अली मिराली।
1: शमन अली मिराली, ओके मैं सर्च करती हूँ।
0: लाजमी प्ले करना।
1: ओके और कुछ कहना है?
0: जी कुछ नहीं कहना बस।
1: ओके जी अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, जो कि आप लोग कर भी सकते हैं, सो कॉल कीजिएगा। और हम चलते हैं एक अदर सॉन्ग की तरफ, और जब तक हमें हमारा सॉन्ग मिलता है तब तक हम सुनते हैं जी आइटम नंबर। एंड हियर कम्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग आइटम नंबर, सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94

0: अब किसको क्या मिला, किसको क्या, ये तो मुकद्दर की बात है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सागर भाई, कैसे? ठीक ठाक
0: खैरियत करे कैसे? ठीक है आप
1: जी?
0: नहीं आप गाना तो सुनाते हैं, बात भी नहीं
1: सुनाते आपके गाने।
0: दिलावत तो नहीं है, मुझे दिल मारा कभी रे दिल टूटा, कभी रे दिल मारा।
1: अच्छा सागर भाई एक बात बताऊं, ये वाला गाना जो है ना मैंने अभी सर्च किया है और ये बॉलीवुड का गाना है, पाकिस्तानी नहीं है।
0: बॉलीवुड का है?
1: यस।
0: पाकिस्तानी है मैं?
1: नहीं पाकिस्तानी नहीं है, ये किशोर कुमार का गाना है।
0: अच्छा
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो पाकिस्तानी सुना देता हूँ।
1: पाकिस्तानी मुझे आप बता दें कौन सा प्ले करूं जल्दी।
0: सुनाऊं? नहीं
1: नहीं सुनाई नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है। आपका गाना हम चला देंगे, जितनी देर में आप सुनाएंगे मैं आपको प्ले करके सुना भी दूंगी। ठीक है तो जल्दी से बता दें। आ जा वे माहिया। किसके किसकी आवाज में?
0: नुसरत फतेह अली खान का है। आ जा वे माही तुम वकिया उड़ी दुनिया।
1: ओके आ रहा है, अब इसको सुने, एंजॉय करें और मेरा साथ दें। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज। ये रहा गाना।

Okay, जी, वेरी नाइस सॉन्ग. और इसके साथ साथ सिस्टर है वो है फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. फहद ने फॉर्म वाली फाइल में फालतू फॉर्म फिट किए. ठीक है, ये कहना है, ये कहने की प्रैक्टिस करें और करना शुरू करते हैं. और जब हमारा अगला सेगमेंट होगा अगले घंटे में, डैट इज बोलो तो माने, उसमें ये आपसे सुना जाएगा और देखेंगे कि कौन आके सही सही और अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कहता है. सो इसी के साथ नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करेंगे. द नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल. गाने के साथ जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

कॉमिक्स तादी सर्वे अॼु पेश कई वेंदी। ज़रियुनि मूजिबि हलंदड़ माली साल लाइ अक्सर हदफ़ हासिल न थी सघिया। GDP ग्रोथ 3.7% रही, हदफ़ 4.2% फीफर जो सालानी आमदनी वारो हदफ़ पूरो न थी सघियो। फीफर आमदनी 5,33,000 रुपयनि ताईं महदूद रहण जो इम्कान। ज़रात ऐं सनती शोबे जी तरक़ी वारो हदफ़ हासिल न थी सघिया। ज़रई शोबे जी अपूरी कारगर्दगी 99% रही, हदफ़ 4.5% हो। नाणे वारे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब इक़्तिसादी सर्वे 2026 पंजवीं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे पेश कई। सुप्रीम जुडिशनल कमीशन जुडिशनल काउंसिल ऐं क़ौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास अॼु थींदा। टिन्ही इजलासनि जी सदारत चीफ जस्टिस जया आफरीदी कंदो। जुडिशनल कमीशन इजलास में कमीशन रूल जी मंज़ूरी जो इम्कान। जुडिशनल काउंसिल जे इजलास में जजिस ख़िलाफ़ शिकायतुनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो। क़ौमी अदालती पॉलिसी कमेटी इजलास में अदालती सदारनि जो जाइज़ो वरितो वेंदो।

अमरीकी हमलन बाद ईरान अपने हुर्मज़ मुकम्मल तौर से बंद कर छो। अमरीका खिलाफ़ भरपूर जवाबी कार्रवाई। कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी फौजी अडन से हमला। पासदार इनकलाब चवैत कुवैत के अली इस्लाम, बहरीन में अहमद अल जबायर अडे और इराक में अरबेल फौजी अडे के निशानों बढ़ाया। मिजाइल और ड्रोन हमलों को पेरों मरेलो मुकम्मल चुको है। दुश्मन बीहर आगराई कई तो जवाब पेरे का सख्त हों। अबन हुर्मज़ में अमरीकी फौज और पासदार इनकलाब विच में चकड़ियों सिलसिलो जारी है। ईरानी मीडिया मूजिब अबन हुर्मज़ वेझो अमरीकी जंगी बेड़न के मिजाइल और ड्रोन से निशानों बनाया। अमरीकी फौज का ईरान में दिफाई हमला मुकम्मल करण जो ऐलान। सेंटकॉम जो चवण है तो अमरीकी फौज ने ईरान में हौसलाती निज़ाम में फिजाई दिफाई निज़ाम स्ट्रेटजिक हंधन के निशानों बढ़ाया। अमरीकी मीडिया मूजिब वह हमला अमरीकी फौज और कमर्शियल जहाजन के खतरन के जवाब में किया गया। तेहरान फारस के जजीरे बंदर अब्बास कशम गरगान बंदरगाह हिंगाम मिनाब और सिरक से बम्बारी कई वही। अमरीकी जंग वाले वजीर पेट हेंग सेथ है तो अस हाँ बम्बारी वसीले ईरान से गाल कंदी। ईरान से ताजा हमला सफारती पोजिशन के बेहतर बढ़ाई। ईरान के कें भी सूरत में एटमी हथियार हासिल कर नींदी। अबन हुर्मज़ जो कंट्रोल भी अमरीका वटी रो। अज रात ईरान के अहम स्ट्रेटिक हंधन के तबाह किया वो। इन भेरे हमला सख्त वाजे होंदा।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल रूम में ईरान हमले बाबत काबीना मेंबर की ब्रीफिंग नायब सदर जेडे वेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ जॉइंट चीफ चेयरमैन जनरल डेन केन एस्टर विटकोफ बया अमलदार सदर ट्रंप के ताजन हमलों बाबत आगाह किया। अमरीकी मीडिया मूजिब इजलास में मुख्तसर वक्त ईरान से वे पैमाने के हमलों की मंजूरी दी वही जी ईरान के मुआवजे झुकाए सकें।

काजी अहमद भरसां पुलिस अहलकार जो लाश है तो पुलिस चवण आहे त अहलकार जबल जमाली ड्यूटी मुकमल करे पंहिंजे कमरे में सुतो त संदसि लाश मिलियो। वाकिए जी जांच कई पई वञे।

0: कश्मीर भरसा हथियारबंदन घराडो बीठल नौजवान के कत्ल कर छो कचेवार इलाके में हथियारबंदन नौजवान रहमतुल्ला मजारी के फायरिंग कर कत्ल कर लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले।
1: पाकिस्तान की शान।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर KTN News।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते

मैसेजेस और कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. मैसेजेस और कमेंट्स के मुझे रिसीव होते जा रहे. सो कमेंट्स की तरफ अगर हम चलते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स हैं जी. अमार रमेश कुमार, बहुत सारे कौन और कहाँ से. हेलो, वालेकुम अस्सलाम. मीर मुझे जो बोलेंगे टांग है कि फहद ने फाइल में फॉर्म फिट किए. फाइल

0: स्टॉप स्टॉप,
1: रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अच्छा
2: हमने गाना सुन दिया था, साल भर पानी करके प्ले करो, आपकी बड़ी मेहरबानी।
1: ओके करते हैं, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा खा। और 0300001 3488 एक और कॉलर। हेलो जी, खैरियत थी? गाजी खान रिंद भाई, कैसे? अच्छा मुझे बताइए, सुन रहे हैं?
3: जी जी बिल्कुल।
1: ओके टंग ट्विस्टर सुनाए? सुना दे। नहीं नहीं नहीं नहीं, गाना नहीं, गाना नहीं। हेलो भाई, टंग ट्विस्टर ट्विस्टर सुनाए।
3: साथ ने फोम वाली फाइल में, फोम वाली फाइल में फोम फिट किए, साथ ने वाली फाइल में फिट किए, फाइल में फालतू फोम फिट किए, साथ ने फोम वाली फाइल में। मैंने तो धुन में सुनाऊंगा।
1: गाने वाला सेगमेंट ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफिज। 0300001 3488

0: काफला, इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल काबिले तहसीन खेलों का मैदान, नक़द होने वाले तहरीर और ज़हन मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर इरापुर का विजिट, रابطے के लिए डॉक्टर अल्ताफ मजर स्कूल सिस्टम 0300272334, निसार एम प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टर 01-3853।
1: मेरा और हाल आने डीपू अनेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब
1: आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: रापते लाए नबी मुगल 0300-32372-424601।
3: खूबसूरती का असल राज इसमें टिमन ई बीज और जदीद माइक्रो सिर्फ पॉट्स को करें फेड कुदरती असली ग्लो डिटिक असली ग्लो हर
4: खुश जर्म लेने के ड्रॉप पर कराची इस्लामाबाद जो DHRHMB इस्लामाबाद कंसल्टेंट आई फैमिली फिजिशियन लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब छंछर आचरती बगे ताई जुगंदा आहिन हर जुमे माहिर कन गलो पुरानो नजलो नसूर नजर कन जो वसूर घटन शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फाट टीबी मादे जी अली जो वध मर्ज हेपेटाइटिस गुर्दे जी पजी पथरी जो बगैर ऑपरेशन थोरो चेहरे जी खारिश जो न वधन मर्दन आई औरतन में वजन जो कामयाब थो रबते लाए 0301-9196-51।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वाह मता नहीं
5: अदा नौ दुकान खोलियो तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
4: निकल शरण तोड़े गोछन में जी मेरा पर पूरी हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार बयो जो एड बंद कराण ते दिल्ली
5: मरंदी
6: हां इश्तियारात आम इतला मिलाद मजलिस मुबारक मतलब हर टाइजिंग
5: जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरा पर FM 94 नज गर्ल स्टिकनी रोड मेरा पर
6: रابطے लाए हाकिम अली जिसका
7: 01-3992-8
8: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी FM 94।

back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आर जे रुक साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और जी बोलो तो माने सारे लोग क्या कहते हैं हम करेंगे कौन कौन शिकाले लेने जा रही हूँ लाइन पे. हेलो हेलो हेलो 0111348 एक और कॉलर. वालेकुम अस्सलाम सरदर्द कैसे हो? अच्छी हूँ. मुझे बताएं कि बोलना है सुना है अच्छा सर मुझे कुछ याद आया है वो मैं ऑन एयर बताऊंगी है ना. एक ऐसा स्टूडेंट होता है ना कि जिसको टीचर कहे जिसको जिस पे टीचर को शक हो कि इसको अगर मैं रीडिंग के लिए खड़ा करवाएगी ही नहीं और जब उसको वो खड़ा अपनी और फिर जब वो रीड करना स्टार्ट होता है आठ टीचर उसको कहते हैं ठीक बैठ जाए बैठ जाए. वो वाली मुझे सर्द है ऐसे स्टार्ट होती है ठीक है बस बस ओके. अच्छा इसके किस किसने हमें टंग टूशर कह के दिखाया वो भी हम आलिन कर रहे हैं लग रहा है इनको ओके. अच्छा और गाजी खान रिंद का गोहान रिंद से मैसेज आया है कहते हैं शेर गाजा अली रिंद शहजाद अली कोनेन जेरा बाजी आपको शो आपका सो आप बहुत सारा थैंक यू जी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. और कौन सा होगा मेरे ख्याल से हम सुनेंगे ये वाला गाना कर रही हूँ सुनते हैं एंजॉय चलते हैं स्टे ट्यून्ड.

0: के लिए सिर्फ सामान नहीं बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान है, अकाउंट रिलायबल, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब करंट अकाउंट। फ्री चेक बुक, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की ई भर में फैला हुआ ब्रांचेस का अलहबीब भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अपना शहर अपना घर और मेहराबाज GAFM 9।

0: Okay, जी, welcome back once again. और किनारी beautiful song. और song के साथ साथ आज का जो हमारा segment बोलो तो माने में आज के जो वो है तीन, जिसमें से हाफिज लखमीर, दूसरे गाजी खान रैन और तीसरे सरदर्द. तो ये तीनों आज के विनर्स हैं और इन तीनों ने बहुत अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर क्या क्या दिखाया है. कि कॉलर को भी इंटरटेन करेंगे, चेक करेंगे जी कौन है लास्ट एंड लकी कॉलर. हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम. अस्सलाम जी.

0: जी जी अच्छी बात क्या है इसलिए
1: नहीं सोचती थी, सब समझ रहे हैं आज साहब को पता है क्या बता।
0: तो वैसे कल भी आपने ये ख्याल से है ना?
1: जी जी मैम, तो ये जबान एक ही होता है ना
0: अच्छा औरतों की दो जबाने होती है क्या
1: वो तो आप क्या बोल सकते हैं
0: मुझे ना उल्टा लगता है। खैर और कुछ
1: है ना?
0: हाँ अलहमच। और आज की अच्छी बात हमने सुनी और क्या एक गाना प्ले किया।

करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. So this is me, RG Rukhsar, signs out. अच्छा जाने से पहले एक मैसेज नजर आया है मुझे. सलाम बाजी जुल्फिकार अली खोड़ो फ्रॉम आखिल बाजी शो नाई से प्लीज प्ले मास्टर मंजूर, कल चलाएंगे लास्ट में सुनाओ बाजी रुखसार को, मयार मिल जाएगी. अच्छा लास्ट में अब ये वाला सुने. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी. लिव सिंपल बट थिंक हाई. दिस इज मी आरजी रुखसार, साइन्स आउट, टेक केयर, गुड बाय, अमाने खुदा, अल्लाह हाफिज़.

अमरीका ईरान जा अमन गालियुनि दौरान हिकु वेझे हमला, अमरीकी फ़ौज तहरान ऐं बंदर अब्बास जी बम्बारी, टॉम हॉक मिज़ाइल जो इस्तेमाल, जानी नुक़सान थियण जा इतला न मिलिया। सेनकाम मूजिब हमला ईरानी जागतवाद कया विया, जिन खे हाणे रोकियो पियो आहे। सदर ट्रंप चयो आहे त अमरीकी फ़ौज 49 टॉम हॉक मिज़ाइल ईरान ते फायर कया आहिनि। तहरान ते मौजूदा हमलनि में इसराइल शामिल न आहे। जेकॾहिं ईरान मुआदो न कयो त बम्बारी करे असां हालत ख़राब करे छॾींदासीं।

गाजी अहमदगढ़ से पुलिस एहलकार जो लाश पुलिस चवण है एहलकार जबल जमाली जो लाश कमरे में मिलो है जांच करूं पा। कश्मीर भरसा हथियारबंदन घराडो बीठल नौजवान के कतल कर छो कचेवारी इलाके में हथियारबंदन नौजवान रहमतुल्ला मजारी के कतल कयो। दोदापुर वेझो मीरामपुर वाले इलाके में हथियारबंदन की फायरिंग में एक जणो कतल बजना जख्मी। कोको पुलवट नामालूम हथियारबंदन की फायरिंग में बुढ़ल बिरोही के कतल किया वो जवाबदार फरार।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाकी तमाम पखन जे मुकाबले जबरदस्त हवा। रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का।
1: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
4: खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0383 85 569

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ
2: 93-2-0-1-8-00-3।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरा।

मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94
3: निखार ताजगी सांगड़ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजय दंदड़ा सबने खूबसूरत मासूम ही सोने समाज उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरकुल दो के समान दो चाहतों की बारिश उलासवल खजानों के साथ दुआ ही पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नीचे जाकर जमीन से आसमां तक जिंदगी से मौत तक चांद से दर्द से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, यानी कि आप लोगों की खूबसूरतियां आप लोगों को बताई जाती हैं इस प्रोग्राम में कि किस तरीके कार को फॉलो करके ना सिर्फ आप अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि आप हमेशा के लिए हसीन और खूबसूरत बनते जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आपकी खूबसूरती अब आप लोगों के हाथों में है। तो बिल्कुल जी बताएंगे बहुत ज्यादा वाली बातें जो कि आप लोगों को बताने के लिए ही होती हैं। इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। हाँ जी जनाब आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जरा आपने अभी तारीफ करवाते हैं सो लिसनर्स फॉर प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। तो चलिए जी ब्यूटीफुल बनने के लिए रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ साथ मौजूद रहने के लिए। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो बताएंगे कि आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ साथ अपने हाल चाल भी बताते जाइए सो डियर लिसनर्स हालत कैसे है आपकी हालत हो। उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सिपकुल मूड के साथ सिपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है। फाइनल यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं। तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक, यानी कि पूरे 2 घंटे में आपके साथ मौजूद रहूंगे। तो इसी उम्मीद के साथ इसी मोहब्बतों के साथ कि आप भी हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं बिल्कुल सी पूरी 3 बजे तक आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो में। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन दोनों प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए खूबसूरती ही खूबसूरती है। तो बताएंगे जी बहुत ज्यादा वाली बातें बताएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे

लोगों के समातों की नजर करते हैं और उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. सो प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए.

ओके जनाब, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरत होते जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी, जहां जहां तक अवेलेबल हो चुके हैं या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे कि कहां कहां पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए या फिर आप चाहते हैं कि भाई हमारे एरिया में भी मिलने चाहिए, तो बिल्कुल आप बताएंगे। और इसी के साथ साथ यहां पर मैं आप लोगों को बताती हूं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या लेकर आई हूं। तो आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक होने वाला है वो मुझे ये लगता है कि ये सवाल जो है ना वो मुझे आप लोगों से पूछना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे कि हम आजकल जो है ना वो मोबाइल के बगैर जो है हमारा जीना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। थोड़ा सा क्या, मतलब बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है आजकल। हम तो ये समझ रहे हैं कि मोबाइल के बिना शायद जिंदगी जो है ना हमें अच्छी लगेगी भी या नहीं। तो मेरा ये आज आप लोगों से सवाल होने वाला है कि आप मुझे ये बताइए जरा कि आप लोगों से अगर आप लोगों का सेल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए, यानी कि नो मोबाइल एक हफ्ते के लिए, तो आप मुझे बताएं कि उस एक हफ्ते के अंदर आप क्या कुछ करने वाले हैं विदाउट सेल फोन। ओके, तो आज के प्रोग्राम का बिल्कुल ये जो है ना वो सवाल ही टॉपिक है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का जो फोन है ना, मोबाइल है ना, ये ले लिया जाए पूरे एक हफ्ते के लिए, तो उस एक हफ्ते में बिना फोन के आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये आज आप मुझे बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घुने वाले लिसनर्स हैं, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके सुनने वाले लिसनर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा फेसबुक पेज है, आप आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर करेंगे।

0: ये तो जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ओके जी, पोस्ट को ज्यादा वाली जो है ना वो लाइक और शेयरिंग दिया करें ताकि बहुत ज्यादा वाले लोगों को हम बता सकें कि मार्केट में आप लोगों के लिए कितने अच्छे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो जो लोग प्रोडक्ट्स को लेकर कंफ्यूज होते रहते ना कि हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, मार्केट जाते हैं तो जरा सी ये बात उन्हें समझ नहीं आती कि जो इतने सारे प्रोडक्ट उनको दिखाए जाते बताए जाते तो वो सारे प्रोडक्ट उनकी स्किन के हिसाब से नहीं होते। तो मैं आप लोगों को ये समझाती हूँ कि अगर आप मार्केट जाएं तो आप लोगों का जहन जो है ना वो क्लियर होना चाहिए और आप अगर मार्केट जाएं तो आपने क्या परचेज करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के पास मौजूद है जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए लॉक करते जा रहे हैं। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए है जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज फेस वॉश आप लोगों के लिए है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लोगों के लिए है, व्हाइट एज लवली क्रीम आप लोगों के लिए है और उसके अलावा जो है ना डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन फेस वॉश है। ये तमाम प्रोडक्ट्स हैं जो कि इजीली आप लोगों को मार्केट से मिलने वाले हैं। तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर आपने डायल करना है 03-15-799-0595। ये नंबर लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके एरिया में, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर, आपके गोठ में, आपके सिटी में ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए। ठीक हो गया, 03-15-799-0595 ये नंबर याद रखिएगा। ऐसे के साथ साथ आज आप मुझे बताते जा रहे हैं कि आप लोगों ने फर्ज कर लेना है कि अगर आप लोगों से आप लोगों का मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते को आप किस तरह जो है ना वो गुजारने वाले हैं बिना मोबाइल फोन के। फर्ज कर लें जरा, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप एक हफ्ता। ओके जी, तो आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके उनमें हमारे साथ यहाँ पर आदिल हुसैन मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम, खुश शाहीन जी जी सफा खुश था बताया कि आयो। कहते हैं कि सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। बिल्कुल जी। और अब्दुल कपूर कैसर हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आपको खुशामदीद कहते हैं। और उसके अलावा अब्दुल गफूर कैसर आ कहते हैं नाइस योर शो, थैंक यू वेरी मच। और हिदायतुल्ला कहते हैं हमारे कहते हैं हमारे मोहल्ले में शादी हुई थी, अगले ही दिन बचा हुआ सालन खराब हो गया क्योंकि फ्रिज में रखना ही भूल गए थे। अस्सलाम वालेकुम, केड़ा हाल है सिदरा, आज ये सॉन्ग चला दी असांजे करे लाड़कानो समझो इंग्लैंड थई, लिंक भेजू। बिल्कुल जी, आप मुझे लिंक शेयर कीजिएगा। और वफा मीर मुनव्वर अली हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। और मौलाई मुजाहिद बाजार में सुन रहे हैं ठूफ चूसल से, अस्सलाम वालेकुम सिडो जी, केड़ा हाल आहिन, उम्मीद है तो बिल्कुल ठीक ठाक हुंदा, असा तवां के शो में वेलकम था चो, असा भी तवां के शो में वेलकम था चो, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, वेलकम मोहम्मद जमान भाई। और मोहम्मद अली खोसू हमें सुन रहे हैं मटियारी से, मोहम्मद अली खोसू भाई आपका भी वेलकम करते हैं। साजिद हुसैन सुमरू हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। और उसके अलावा अदनान नूर हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते आरजे गोइंग वेरी वेल एनर्जेटिक स्टार्ट, बहुत शुक्रिया अदनान नूर आप हमारे साथ मौजूद है। और हिदायतुल्लाह कहते हैं अदीब तूने नोट किया है कि तुम्हारा फ्रिज चलता तो है लेकिन घर से बाहर नहीं चलता। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती जो चलती तो है लेकिन वो घर से बाहर नहीं जाती। तो टेंशन ना ले। और किशोर भाई कहते हैं कि हमें तो आदत है इंतजार करने की, तुम करवाती रहो हम करते रहेंगे। सलाम अदी खुश आयो, ये स्मार्ट ठीक था बजायो, अज भला आदि चाहिए तो वह खैर था। और कहते ओ नो ये क्या पूछ लिया आज। बिल्कुल जी, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से ये वाला सवाल पूछ लूं। अशोक कुमार हमें सुन रहे हैं, अशोक कुमार भाई ही लो, एस एन आर बाणी वालेकुम अस्सलाम, कहते ओ माय फेवरेट आरजे, आप कैसी हैं, लिखते हैं वेलकम टू द शो व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, आपको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद। और मोलाई मुजाहिद बोजदार कहते हैं सिडो जी आज एक सॉन्ग प्ले करेंगी पाकिस्तानी मूवी का, ये दिल आपका हुआ सॉन्ग वो लड़की है या जादू। सिडो जी लाहुती साजन चांडियो भी आपका शो सुन रहा है। अच्छा, यानी कि ठीक है जी, गाना आपने अच्छा बोला है तो लाजमी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। और बहुत शुक्रिया, आप दोनों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रोग्राम में। और इसी के साथ साथ टॉपिक को फॉलो करते रहिए कि अगर आप लोगों से एक हफ्ते के लिए आपका फोन सेल फोन मोबाइल ले लिया जाए तो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले हैं, क्या करेंगे बताएं मुझे जल्दी से। और साथ ही अगर आप वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने एरिया में अवेलेबल कराना चाहते हैं देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595 डायल करते जाइए खूबसूरत होते जाइए यहाँ पर टाइम हुआ जाता है जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ
1: सचल की सर मस्त धरती

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-8051
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-33-8559
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
3: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03151557724।
5: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

हिकिड़ो ॾींहुं गुज़ारींदो आहियां, बाक़ी हफ़्तो छा हिकु सेकंड बि गुज़ारण ॾुखियो आहे. उहा ई त ॻाल्हि आहे, अगरि तव्हां फ़र्ज़ु करियो तव्हां जहिड़नि माण्हुनि खां हफ़्तो मोबाइल वरिती वञे त तव्हांजो हफ़्तो कीअं गुज़रंदो, सोचण वारी ॻाल्हि आहे. और अशफाक अली हमारे साथ मौजूद हैं. वालेकुम अस्सलाम अशफाक, आपको खुश आमदीद कहते हैं. और वासु भाई कहते हैं मुझे प्यारी अदी सलाम. वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा, खुश आयो. अच्छा मौलाई मुजाहिद बोजार के थे, टॉपिक ये सीन मेरे साथ हुआ था. पापा ने मुझसे मोबाइल छीना था, बोले पढ़ाई पर ध्यान दो. मैंने घर के कुछ बर्तन तोड़े और फिर उसके बाद मोबाइल वापस मिल गया आपको. ये ट्रिक तो मेरे ख्याल में लड़कों का जो ना बड़ा वर्क करता है कि बस उनको थोड़ा गुस्सा आ जाए वो घर के बर्तन तोड़ने लग जाते हैं. तो ऐसा मत किया करें भाई. और न खां अलावा जेको आ कहते हैं गानो, हाँ गानो हलाएं तो ताजो थोड़ो सबर करना कयो. दर्द दिल हमारे साथ मौजूद थी. वालेकुम अस्सलाम. और न खां अलावा वासु भाई कहते अदी सॼो जवाब मां पंहिंजनि कबूतरनि सां हफ़्तो गुज़ारे वेंदसि. उन्हनि खे उॾारण ऐं दाणो ॾियण में उन्हनि सां टाइम पास थी वेंदो आहे. इहा बि ॻाल्हि आहे, कबूतर ऐं माण्हू अलॻि ई दुनिया जा माण्हू हूंदा आहिनि. सही आहे बाबा, सही आहे. इंजॉय कयो पंहिंजी ज़िंदगी. और नज़ीर खोसो में सुन रही हैं बलोचिस्तान सां से भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम. और शहबाज भी हमारे साथ मौजूद है. हेलो. अच्छा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए. अच्छा उन खां अलावा हेंजी दर्द दिल कहते हैं कि रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं. अगर आज मुश्किल वक्त है तो याद रखो सूरज भी हर रात के बाद तुलू होता है. अपने ख्वाबों पर यकीन रखो क्योंकि नामुमकिन सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक कोई उसे मुमकिन ना बना दे. बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात हमारे साथ शेयर कर दी है. दर्द दिल आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं. हिदायतुल्लाह कहते हैं न बाबा ओनली जियो. अच्छा दिलीप कुमार मेंगवार हमारे साथ मौजूद हैं. दिलीप कुमार भाई आपको खुश आमदीद कहते हैं. और तव्हां खे असांजो शो पसंद अची पियो, सो मोहबतूं आहिनि प्यारे भाउनि जो. किशोर भाई कहते हैं मां अच्छा वॻा पाता हूं तो घोट लॻंदा हूं. इहा ई ॻाल्हि आहे न, जॾहिं मर्द जेको आहे न अछो वॻो पाईंदो आहे त वाक़ई घोट लॻंदो आहे. इन लाइ मर्द जो शान आहे बाबा, अछो सूट पाईंदा कयो, सुहिणा लॻंदा आहियो. ऐं वरी जॾहिं तव्हां व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लॻाईंदा पोइ त बाबा छा ॻाल्हि करियो तव्हांजी. ऐं जेके माण्हू अञा ताईं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु कोन कनि पिया, सो उन्हनि खे चवंदमि बाबा छा था सोचो, एतिरो न सोची ना कयो. जेको करणो आहे सो करणो आहे, व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करणो आहे. ऐं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांजे लाइ हर तरह जो प्रोडक्ट मौजूदु आहे. यानी कि हाणे तव्हांजी का बि बहानेबाज़ी न हलंदी, छो त हिते तव्हांखे हर हिकु प्रोडक्ट मिले थो, जंहिंमें तव्हांजे लाइ नाइट क्रीम बि आहे, तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम बि आहे, साबुण बि आहे, फेस वॉश बि आहे, एक्नी ट्यूब बि आहे. अञा ॿियो छा खपेव, जेके माण्हू आहिनि अलॻि अलॻि मसलनि सां फेस कनि पिया, उन्हनि जे चेहरे ते अलॻि अलॻि मसला आहिनि, जीअं तव्हांजे चेहरे ते दाणा आहिनि, या फिर तव्हांखे का सुठी नाइट क्रीम नथी मिले, तव्हांखे का फेयरनेस क्रीम नथी सुठी सूट करे, त बाबा तव्हांजे लाइ वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हर तरह जो प्रोडक्ट खणी आयो आहे. सो वाइट एश ब्यूटी क्रीम जी अगरि असां ॻाल्हि कयूं त वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका एवोकाडो एलोवेरा ऐं मिल्क सां तयारु कई वई आहे, ही टई चीज़ उन जे अंदरि एड कयूं अथसि, तॾहिं वाइट एश ब्यूटी क्रीम तयारु थी आहे. ऐं वाइट एश ब्यूटी क्रीम जेका तव्हांजी स्किन खे फ्रेश बणाईंदी आहे, फेयर बणाईंदी आहे, क्लियर बणाईंदी आहे, सुहिणो बणाईंदी आहे. सो मर्द हज़रात हुजनि या ख़वातीन, तव्हां ॿई इस्तेमालु करे सघो था. उन खां अलावा जेके माण्हू दाणनि जी वजह सां परेशान आहे, शदीद वारो परेशान आहे, त तव्हांजे लाइ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तयारु कयो आहे. डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जेको आहे ही बाबा ॾाढो ज़बरदस्त ट्यूब अथव उन्हनि माण्हुनि जे लाइ, ख़ासि करे जेके पंहिंजे चेहरे जे दाणनि जी वजह सां परेशान आहे. सो अगरि तव्हां बि एक्नी खे ख़तमु करणु चाहियो था त डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब तव्हांजे लाइ मौजूदु आहे. आयुर्वेदिक फार्मूलो आहे जनाब, ऐं तव्हांजे एक्नी सां फाइट कंदो आहे. तव्हांजे एक्नी खां अलावा तव्हांजा निशान आहिनि जेके फेस ते उहे ख़तमु थींदा आहिनि. तव्हांजे चेहरे ते कोई कट जो निशान आहे, कोई सड़न जो निशान आहे, कोई केतिरो पुराणो निशान आहे जेके तव्हां रिमूव करणु चाहियो था, त तव्हां बिल्कुलु डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमालु करे उन खां छुटकारो हासिल करे सघो था. उन खां अलावा इस्तेमालु करण जा तरीक़ेकार बि ॿुधायां थी, पर पहिरियां सभु प्रोडक्ट जे बारे में त ॿुधी वठो. ऐं तव्हांजे लाइ वाइट एश ब्यूटी सोप बि मौजूदु आहे, वाइट एश जो फेस वॉश बि मौजूदु आहे. सोप जेका उहो एलोवेरा एवोकाडो ऐं मिल्क सां तयारु कयो वियो आहे. बाक़ी जेको फेस वॉश आहे उन जे अंदरि वाइटमिन सी मौजूदु आहे. ठीकु आहे, इहो इन्हनि ॿिन्हिनि में डिफरेंस आहे. उन खां अलावा अगरि तव्हां सोप लॻाईंदा आहियो त सोप लॻाईंदा, अगरि तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा आहियो त तव्हां फेस वॉश लॻाईंदा, ईज़ी. ऐं अगरि तव्हां वाइट एश लवली क्रीम जे बारे में नथा ॼाणो त तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां त वाइट एश लवली क्रीम हिकु उहा वाहिद क्रीम आहे जेका फेयरनेस क्रीम सां गॾोगॾु हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि एड कई वई आहे. यानी कि हिन में ॾिसो था तव्हांजे लाइ केॾो मतिलबु हिननि फ़ाइदो सोचियो आहे, त जेके बि असांजा सुहिणा सुहिणा लिसनर असांखे ॿुधनि पिया, जेके सुहिणा माण्हू पंहिंजी ख़ूबसूरती जो ख़्यालु रखणु चाहिनि था, त हुनजे लाइ बिल्कुलु उन ई तरीक़े जो प्रोडक्ट हुजणु लाज़मी आहे. सो अगरि तव्हां बि वाइट एश लवली क्रीम जो इस्तेमालु करणु चाहियो था त तव्हांखे इहा ख़बर हुजे
बाबा वाई चीज लवली क्रीम जगाए ही एकड़ी फेयरनेस क्रीम आहे पर सिर्फ फेयरनेस क्रीम ना है जी अंदर एड़ियों चीजों एड थियल आन जो रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन से तैयार कई वई है जिन अंदर ट्री विटामिन जा कैप्सूल एड आन ट्री विटामिन जा कैप्सूल यानी कि तवा जी स्किन ते कोई भी विटामिन जी कमी आए तो पूरी थी वेंदी जदे तवा वाइटिश लवली क्रीम जो इस्तेमाल करना है जिन अंदर विटामिन डी आहे विटामिन ई आहे विटामिन सी आहे विटामिन बी3 आहे उनका अलावा सनस्क्रीन भी एड अथस जिन तवा के अलग सा सनस्क्रीन लगानो न पवे हेड़ी गर्मी जी मौसम में तवा जी स्किन ते सनस्क्रीन भी लाजमी जरूरी हुंदो आहे अगर तुम सनस्क्रीन नथा वठो या फिर नथा इस्तेमाल कयो तो तुम्हें टेंशन वठन की जरूरत ना है तुम वाइटिश लवली क्रीम लगाए सको था वाइटिश लवली क्रीम तुम्हें स्किन ते ग्लो भी दींदी और तुम स्किन के प्रोटेक्ट भी कर उन सिज के असरात का जगह सिज जहा असरा तुम्हारे चेहरे के नुकसान पहुंचाई समझो था सो वाइटिश लवली क्रीम तुम डीह जो लगाए सको था रात जो लगाए सको था नंढा बार हुजन वो मायू हुजन मर्द हुजन कुराड़ा आयो तुम सब हणी सको था छो तो वाइटिश लवली क्रीम जी ना एतरी जबरदस्त क्रीम है जी तुम मजो दई छी So white ash लवली क्रीम तव्हां लॻायो ऐं तव्हांजी ख़ूबसूरती सफ़ाई चमकंदी वधंदी उनखां अलावा ॿियो छा आहे उनखां अलावा सोप ऐं फेस वॉश जी अगरि ॻाल्हि कयूं त उहो बि ऑल स्किन टाइप जे लाइ तव्हां बिल्कुलु हर कोई इस्तेमालु करे सघे थो ऐं बाक़ी हा लॻाइण जा तरीक़ेकार छा आहिनि तो बिल्कुल लगाने के तरीकेकार यही आन अगर तुम वाइटिश ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कयो था तो वाइटिश की ब्यूटी क्रीम तुम रात टाइम इस्तेमाल कर सो तो एकड़ी नाइट क्रीम है रात टाइम तुम इस्तेमाल कयो उनका अलावा फेस वॉश तुम पे लाजमी कजो फेस वॉश कर वाइटिश ब्यूटी क्रीम अप्लाई कर सो उनका अलावा अगर तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाना चाहो था तुम्हारे चेहरे से दाणा है उन्होंने खत्म करने के लिए तो तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब रात टाइम इस्तेमाल कर उनका अलावा तुम फेस वॉश लाजमी कदा कर कोई भी प्रोडक्ट तुम लगा था तो वाइटिश लवली क्रीम हणो था या डॉक्टर पिंपल ट्यूब हणो था या वाइटिश ब्यूटी क्रीम हणो था इनन के इस्तेमाल करने का पहिरां तवा के पांजो मुंह लाजमी धोणो आए सही आ ता पांजो मुंह धो पांजे फेस के सफा क्लीन कयो क्लियर कयो उनखा पोए तवा प्रोडक्ट अप्लाई कयो पांजे स्किन ते तदई जेको प्रोडक्ट आ तवा के सही तरीके सा रिजल्ट दींदो आ सो प्रोडक्ट के सही तरीके सा इस्तेमाल अगर तवा करना तस तवा के बिल्कुल सुठो रिजल्ट मिलंदो आ सो सुठे रिजल्ट हासिल करन लाए तवा के सही तरीके सा इस्तेमाल करना पवंदा सो बिल्कुल सुना इस्तेमाल कंदा हलो ऐं पंहिंजे ख़ूबसूरती खे वधाईंदा हलो ऐं बिल्कुलु तव्हां बि हसीन ऐं प्यारा थियणु चाहींदा हूंदा सो तव्हां वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमालु करे सघो था ऐं तव्हांजे एरिया में तव्हांजे ॻोठ में तव्हांजी सिटी में नथा मिलनि त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 ओके जी डायल कीजिए हिकु नंबर और साथ साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए और जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है उसका जवाब भी देते जाइए तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताते जा रहे हैं कि अगर फर्ज कर लें आप लोगों से आपका मोबाइल फोन एक हफ्ते के लिए ले लिया जाए तो एक हफ्ता वो आप कैसे गुजारने वाले हैं क्या करेंगे उस एक हफ्ते में अगर आपका सेल फोन आपके साथ ना हो तो

बिल्कुल नया प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए. अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है आरजे सिद्रा. आपकी खातिर मेरी आपी और भाभी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम सोप के साथ इस्तेमाल कर रही है और मैं खुद व्हाइट एश लवली क्रीम लगाता हूँ और मेरा भाई सिर्फ डी स्किन का फेस वॉश लगाता है. और जी, ये हमारे साथ मौजूद है इमरान अली बिरोही फ्रॉम लाड़काना. इमरान भाई, क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का. और उसके अलावा हैं जी, ये कहते हैं बाजी टॉपिक का जवाब है, मैं पूरा हफ्ता सो जाऊंगा. पूरा हफ्ता कैसे सोएंगे, इतनी नींद आती नहीं है. और इमरान अली बिरोही भाई, हमारे शुक्रिया. फकीर मोहम्मद हमारे साथ ही पाक आर्मी पनो आकिल से कहते हैं साकी आवाज बहुत प्यारी है और आप टैलेंटेड भी बहुत है, माशाल्लाह खुश रहें. थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया. मीरपुर खास अब्दुल्ला महर है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम बाजी, टॉपिक है मोबाइल के बिना एक हफ्ता क्या एक मिनट भी नहीं रह सकता, बाकी जियो करे. हाजिर साइन जियो था कहूँ से. और ये हमारे साथ एक कौशल कहती है, जन्नत आप कैसी है, आपकी जन्नत बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं कौसर आप कैसी हैं. और कहती हैं वो तो मैंने बताया था ना, ये आपकी गलती है कि आप शो सही से सुनती नहीं है. और उसके अलावा क्या कहती हैं, आपका शो बहुत बहुत अच्छा है. थैंक यू सो मच मेरी प्यारी. इरम कहती है सलाम अलैकुम मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, कल चलें फिर आपने साइलेंट होकर शो सुना, फिर बताएं आपको कैसा लगा. अच्छा, जो लोग शो में शामिल होते हैं फिर वो अगर साइलेंट होकर शो सुने तो फिर थोड़ी कैफियत अलग सी होती है कि उनको ये चीज जो ना मजा नहीं देती कि भाई हमें तो मैसेज करना चाहिए, मुझे ये लगता है. और ये कौसर कहती है कि जन्नत अगर आपसे ले लिया जाए फोन तो आप क्या करेंगे. मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज है, मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ. मैं वैसे ही फोन जो है ना वो कम यूज करती हूँ. अच्छा साइमा मीर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह मैं बेस्ट आरजे सिद्रो, आप कैसी हूँ, आपका शो मस्त है जैसे. ठीक है. और कहती टॉपिक भले ले जाओ मैं तो चली जाऊंगी अपने गाँव. हाँ भाई, गाँव में वाकई लोग बड़ा एंजॉय करते हैं. एम कहती दिलबर आप ही आपकी कल से मेरी तबीयत वाकई थोड़ी सी अजीब हो गई है, थोड़ी सी तबीयत जो है ना वो ठीक नहीं है, गला खराब हो गया है मेरा और मुझे जुकाम हो गया है, तो ये कल से है सूरत हाल. आप दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाऊँ. और न खा अलावा जी को आते जी की मानो असा के फेसबुक ते बुधो पया बाबा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा हलो और तमाजी शेयरिंग मुखे थोड़ी कम नजर अचे पई, ई छू कंदा आयो. अच्छा शेला कुल जो गानो हलायो थम, मैं शेला कुल जे गाने हलाने संगड असांगे लुबना नजर अच्छी वही. लुबना कहती है अस्सलाम वालेकुम सिडो जानी, क्या हाल है, मैं भी आपके साथ साथ हूँ. ओके जी, आप हमारे साथ साथ हैं और क्या कहती हैं, नाइस शो एंड नाइस सॉन्ग शेला गुल का. हाँ बिल्कुल, मुझे अंदाजा था कि शेला का गाना सुनकर आप जरूर आएंगे.

हाँ जी वठी तू अचे वठी तू अचे सबर कर समंदर गांगरू हमारे साथ है। समंदर भाई कहते हैं हाय आरजे एंजल सिडा कैसी है। नजीर अहमद गांगरू हमारे साथ हैं। ओके जी वेलकम वेलकम। और आदिल कहते हैं कि जेकडे मुझो मोबाइल एक हफ्ते लाए वठी वने कोई तमा आईने सा सेल्फी कडन दिस पोए समझ में इंदी तो अपलोड कंदा सी कडे अपलोड कंदा जदी आईने सा सेल्फी कडंदा तो अपलोड किया थी आई तो हर 5 मिनट बाद किसे में हाथ हणंदस मोबाइल मिलंदो त पंहिंजो कन चिकींदसि अमर खे चवंदसि मुंहिंजो दिमाग़ हैंग थी वियो आहे वी स्टार्ट जो बटन काॾां आहे किथे आहे अछा ऐं पाड़े जे ॿारनि खां पुछंदसि भाउ वाईफाई जो पासवर्ड उहे चवंदा चाचा असां वटि बि नेट नाहे हफ़्तो पूरो थींदो त मोबाइल खे ईअं भाकुर पाईंदसि जीअं गुम थियल प्यारो वापस मिली वेंदो हुजे। अच्छा ये तो बड़ी भाई आपने अच्छी अच्छी बातें शेयर कर दी। अगर वाकई सेल फोन हमसे ले लिया जाए तो शायद कुछ लोगों की कैफियत ऐसी हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। जी हसन कहते हैं टॉपिक भले 10 दिया मोबाइल खसे छड़ने पर वाई कोने हाँ कुछ मानो इड़ा भी हुंदा है। अच्छा वासु भाई कहते अदी सिडो गाल तई सिद्धी मां सिर्फ वाटेश वारन जो साबुण वठंदुम तां साबुण वठो फेस वॉश वठो पर वठो त सही न हिकड़ी शइ इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे खबर पवंदी त बाबा वाकई प्रोडक्ट में दम आहे सो तव्हां लाज़मी वठो इस्तेमाल कयो। उन खां अलावा दर्द दिल कहती टॉपिक चंदा क्या करती मैं ये तो कभी सोचा ही नहीं तो आज सोच लेना आप सोच कर मुझे बताएंगे अगर एक हफ्ता आप लोगों से फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप कैसे गुजारने वाले क्या कुछ करेंगे जल्दी से बताएं प्रोग्राम कैसे बनते जाएंगे। यहाँ पर टाइम हो जाता है कि हम न्यूज ब्रेक और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाएंगे उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूं। आप सुन रहे प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए।

सिंध हाई कोर्ट में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन खिलाफ माजूर शख्स की दरख्वास्त बुधणी अदालत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पारा जमा करायल जवाब रद्द कर छो अख्तियार ते कावड़ जो इज़हार एस पी एस सी के चेयरमैन सेक्रेटरी ए कंट्रोलर जमल जोगा गिरफ्तारी वारण जारी कर छा टिन्ह जणन के तोहीन अदालत जो नोटिस गुजारी सूमर ते पेश थियण जो हुकम अदालत रिमार्क थींदे चयो अदालती हुकम ते अमल न थियण ते बाबति जवाब ॾिनो वञे।

0: ईरान आमकी हमलनि बाद आपने हुरमत पहिरीं ट्रैफिक लाइ बंदि करे छॾियो आपने हुरमत मां गुज़रण जी कोशिशि कंदड़ पहिरीं ॿेड़नि खे निशानो बणाइण जो ऐलान पासदान इनकलाब चयो आहे त अमरीकी जहाज़ सवाइ आपने हुरमत खे बंदि कयूं पिया बहिरी ॿेड़ा नुक़सान खां बचण लाइ आपने हुरमत ॾांहुं सफ़र न कनि
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बहितर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100
6: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-503-8569
7: अदा
8: वालेकुम असलाम अदा छो परेशान आई
7: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो छा कजे
8: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
7: न अदा
9: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे
7: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी
8: हा अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मीलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतिलब हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी
7: अदा जल्दी कर मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो
9: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
8: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
10: 0301-399-2836

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया जिनके बारे में जानकर आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए कितने ज्यादा जरूरी हैं. उसी से रिलेटेड जरा हम बात करेंगे यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो इनके क्या फायदे हैं और इनको आप किस तरीके का इस्तेमाल करने वाले ये मैं आप लोगों को बताऊंगी. इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को ना वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. ओके जी सो आप लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बता रहे हैं कि अगर आप फर्ज करें एक हफ्ते के लिए आप लोगों से आप लोगों का सेल फोन ले लिया जाए तो वो एक हफ्ता आप किस तरह से गुजारने वाले हैं, क्या कुछ करेंगे. ठीक है जी जल्दी से बताइए और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं. मुझे बताते जाइए फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं 8821 पर ज्वाइन करते जा रहे हैं और रेहान अली हमें सुन रहे हैं कहते गुड शो थैंक यू वेरी मच. रियाज भट्टी हमें सुन रहे हैं फ्रॉम लाहौर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम खुश आमदीद कहते हैं आपको.

मुजाहिद मरी हमारे सारे कराची से आप हमारा शो सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सलाम दीजिएगा 4G रसूल बख्श मरी को. ओके जी, वेलकम करते हैं आपको. अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी कहते हैं टॉपिक आंसर सिद्रा, मैंने मोबाइल लिया ही 2021 में है. पहले मैं आपका शो रेडियो पर सुना करता था, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, भले चला जाए. चलें ये भी अच्छी बात है. और मोहम्मद अली खोसो भाई कहते हैं एक दिन के लिए मेरा कोई अगर सेलफोन लेकर जाए तो मैं एक दिन पूरा नींद करूंगा. एक दिन नहीं ना, यहाँ पर पूरे हफ्ते की बात हो रही है. और उनके अलावा AM अंसारी हमारे साथ ही कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम नोशिरो फिरोज. लिसनिंग ए शो विद बेनजीर एंड हिरा. ओके जी, सबको वेलकम करते हैं AM अंसारी, बेनजीर और हिरा को भी. अच्छा अशफा कहते हैं टॉपिक मोबाइल एक महीने के लिए ले लो, हमारा वक्त सारा मस्जिद में गुजरेगा, आपको भी सवाब मिलेगा तो ले जाएं भले. यही तो बात है ना कि अगर मोबाइल आपके हाथ में मौजूद है तो

ओके जी, ए एम अंसारी कहते हैं युप अवेलेबल ऑन एवरी शॉप इन नवाब शाह, मुझे फ्री में दिलवाए ना. अच्छा चले, मैं कोशिश करूंगी कि आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है. और कहते हैं मुझे भी गोरा चिट्टा होना है प्लीज. मुलाए पारत करायो वाइट एश आईडी स्किन वारन के कसम थव मासी चपरान जो ना मासी चपरान जो कसम न जो खैर तमान जिलाए जको ना असा अवेलेबल कराए सडिया ता आनी तमा की जको ना फ्री में भी जाराइंदा से टेंशन न वठो बस तमा जको आ त चिट्टे थेने जिलाए थोड़ो मेहनत कना कयो तमा की या चीज खबर हो जन गुरे मार्केट में केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल आ आई केडा केडा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जन सगन उई तमा जी स्किन जिलाए जरूरी आ न याद त डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तमा जी एरिया में मिलन था

0: अच्छा अशफाक कहते हैं कि सिदरा लाहौर मां केड़े दुकान ता मिलंदा प्रोडक्ट लाहौर मां तव्हां मालूमात वठो न था मिलंदा पो मुखे बुधायो किथे किथे अवेलेबल नाइन तो सा अवेलेबल कराईंदा सी
1: काफी करे करे मानू चरिया थी व्याहिल
0: अच्छा एसन कहते हैं पर तव्हां शो न कयो तो पोई असा के मोबाइल जी जरूरत नाहे अच्छा माने अगर असा शो कयो था तरी ता मोबाइल जी को इस्तेमाल कयो पया चलो या भी सुठी गाल है या भी असानी कामयाबी अच्छा ये अशफा क्या कहते हैं चलें ठीक है ठीक है और रिहाना खान बखर से हमारे साथ मौजूद है रिहाना आपको वेलकम करते हैं और अनवर भाई भी हमारे साथ मौजूद है अनवर भाई तमाम जो मोहब्बत प्रोग्राम बुधो प्यार टॉपिक चौथो बो मसलो ना है पर तमाम जो प्रोग्राम एफ बी की बुधन रस हाँ वाकई यह सोचने वाली गाल एम अंसारी कहते हैं कि वेटिंग कंदे मां ब्लैक थी वेंदस अल्लाह न कंदो तमा वाइट वाइट थी वेंदा आई तमा थोड़ो सबर कर थोड़ो वेटिंग कयो सही है
1: सांजे ले मिल जो सनी दुनिया में ट्रेंड थी असा भी ब्रेंड सा जा यार
0: छो तो करें करें मानन की वेटिंग जो फायदो मिलंदो है सो वेटिंग करण भी सुठी गाल है आई तमा जे को ना नंबर ते राबतो करे बैठो ठीक है अच्छा कुछ डी पैं एक गाल थी हुई उसे शेयर कदस पर इतने डिठो वे तो टाइम थो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो यह गाल मुखे वेठी वेठी याद अची वही जैसे एम चयो तो मुख्य फ्री में गिफ्ट डारा तद इन गाल ते जो मुख्य यह गाल याद अची वही मैं बुधा थी थोड़ा सबर कर पोस्ट के तमा लाइक एंड शेयर किना हलो आई मुखे बुधा त केड़ो प्रोडक्ट वठण जी तमा के जेको ना तमा सोचो था केड़ो प्रोडक्ट तमा वठी चुका यो इस्तेमाल भी कयो पया छो त जेके मानु अन्या सोचन था ना उनन जला यो आ त बाबा ता जल्दी वेठो देर न कंदा कयो अगर तमा भी देर कंदा त पो तमा भी ब्लैक ब्लैक थी वेना तो मायो नथी चाहे त तमा ब्लैक थी वेना वाइट वाइट हो जो आई ता सोना सोना हो जो आई ता वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो बिनी जो इस्तेमाल कयो उन के अलावा जल्दी मोटी चांदी तमा ने तमा करे न जो मा ओही वनी ओही अचांती सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड इन Keep listening. White Ace and E-Skin Beauty Show is sponsored by White Ace Beauty Products and E-Skin Beauty Products. Lagate rahiye, khoobsurat hote rahiye.

0: धरती से जुड़ा है
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एटमात अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचणंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 खां राति 8 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राब्ते जे लाइ 0385-569-0300-88-5569
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300-002724 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-3865-453
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
6: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
6: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836 मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

मुझे क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना यहाँ पर आप एंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. यहाँ पर आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो बताएं जरा मुझे कि अगर एक हफ्ते के लिए आप लोगों का मोबाइल ले लिया जाए तो उस एक हफ्ते में आप क्या करने वाले हैं. वैसे तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों से ले ही लेना चाहिए. भागे लोगों को अगर मोबाइल दे देते ना लोग तो फिर वो वाकई जो है ना वो आतंक मचा देते हैं. तो ऐसे लोगों से मोबाइल ले लेना ही चाहिए तो बेहतर है. इसी के साथ साथ अगर आप जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके बारे में मैं पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को बताती रहती हूँ. और वो इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो. और आसानी से मुराद ये कि अगर आप इस्तेमाल करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं. ओके, सो जब हम डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो कि भाई खूबसूरत बनना चाहते हैं, जाहिर सी बात है. तो अगर आप भी हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि विटामिन ई बीट्स और माइक्रोबीट फॉर्मुलेशन से तैयार की गई है, और पाकिस्तान में देखा जाए तो 2-3 क्रीमें ऐसी हैं जिनके अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और उसी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी शामिल होती है. डॉक्टर से बिल्कुल जनाब इसे मालूमात के साथ साथ तैयार किया गया है. इस तरह की कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है कि आप लोगों की स्किन के लिए नुकसान हो. तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए. और इसी के साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपने डी स्किन फेस वॉश भी लाजमी ट्राई करके देखना है. तो डी स्किन फेस वॉश ओके हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है. तो लाजमी लगाइए, खूबसूरत हो जाइए और खूबसूरतियों को हासिल करते जाइए. नहीं नहीं आपको नहीं बोला था, आप तो नहीं, आप तो समझदार है, वो बात जरा किसी और की थी.

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ हैं मकसूद मलहा को वेलकम करते हैं। साइमा मीर कहती है लाड़काना की हर चीज अच्छी होती है, जैसे व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, और लोग तो और भी क्या बातें प्यारे हैं जी। माशाल्लाह, अब मेरी सिद्रा को ही देख लें। हाँ जी, बस सिद्रा को ही देख लें। उसके अलावा नूरिस एंटोनियो हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। साइमा मीर कहती है सिड्डो की जुकाम गर्मी वाला, हाँ भाई गर्मी वाला जुकाम हो गया मुझे, ये वाकई खतरनाक होता है, सर्दी वाले जुकाम से भी ज्यादा। तो बस दुआ कीजिएगा ठीक हो जाऊं जल्दी से। और उसके अलावा अच्छा, ये गाना लगाया ये स्पेशली हम शोनी को डेडिकेट करेंगे। शोनी

शोनी शोनी क्या कहती हैं, शोनी कहती हैं आप जान में भी आ गई आपके शो में, आप ही अभी लंच करके अपने रूम में आई हूँ और मेरा आप शो सुन रही हैं, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी। और मुझे बताएं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आपने क्या सोचा है, कब लगाएंगे?

अच्छा इमरान भाई, मुमताज मलिक का गाना चल गया ना एक, तो फिर ये वाला गाना आपका हम कल सुनेंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इरम कहती है यार जवाब है, मैं मोबाइल से बेजार हूँ, अगर कोई एक महीने के लिए ले ले मुझसे मोबाइल तो मैं आपको MP3 में सुनूंगी और आपके पास SMS के लिए अरीबा से फोन लेकर मैं आपको मैसेज कर दूंगी। क्या बात है, आपने तो पहले से सोच रखा है। चले बहुत बढ़िया। अच्छा प्लीज मोहम्मद इब्राहिम संदीलो से, मोहम्मद हारून संदीलो हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई जान, वेलकम करते हैं आपको। और उसके साथ साथ हैं जी इरम कहती हैं, अच्छा बहुत शुक्रिया प्यारी। अच्छा ये फौजी पठान खान कोसो हमें सुन रहे हैं भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। साइमा मीर कहती सिडो ये वाला सॉन्ग बच्चे घर में खेलते खेलते गा रहे थे तो एक बच्चे ने एक लफ्ज का मतलब पूछा, मैंने मतलब तो बताया लेकिन कहा के बाद आपका मैसेज जो है वो मिसिंग पार्ट हो चुका है। साइमा कोशिश करें ये कहा के बाद में जो आपने कहा है वो जरा दोबारा भेजिए मुझे। हाँ भाई जैसी गर्मी चल रही है तो मोहब्बतें गई भाई, जुती जरूरी है, ऐसे नहीं घूमा जाएगा।

जी बिल्कुल, ये गाना ट्रेंडिंग चल रहा है. और नखा अलावा जेको आसो के कसा सकेडा. अच्छा गाना खत्म हो चुका है, सो हम यहाँ पर दूसरा वाला गाना लगाते हैं. ये जी गाना होने वाला है बहुत ही ज्यादा प्यारा.

अच्छा दर्द दिल कहती है कि चंदा अलीजा टॉपिक का जवाब दे रही है कि मेरे पास तो मोबाइल है ही नहीं, मैं तो अच्छा चले मेरा वक्त तो अच्छा गुजरेगा आपका शो सुनकर कॉल भी वो मेरे मोबाइल से करती है, आपके मोबाइल से करती है, लेकिन आपने कभी बात नहीं करी है, इतनी क्यों शर्मीली है आपने दब। अच्छा किशोर भाई कहते हैं मानो अला की साइलेंट थी शो बुधन था हू भी तो जड़ी आरजे जो ना मुमकिन हूं वी मिंट अला की पाना के रोकियो मां भी सोचा लाए कादे भाई वदो मुखे लगे पे अज भी तां सुमी प्यायो नडी वांगे

अच्छा साइमा, तो गाना कौन सा था वो भी बताएं मुझे जरा. अच्छा शोनी कहती है जब मैं इस्लामाबाद जाऊंगी तो वहां से लूंगी, क्योंकि मैं सारी चीजें वहां से लेती हूँ. अगर वहां पर ना मिले तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहीं से परचेज करके जाइएगा. ठीक है, देखिए मुझे कितना आप लोगों का ख्याल.

अच्छा एम अंसारी कहते हैं सिडो मेरा खर्चा आपने बढ़ा दिया, कोई मुझे कह रहा है कि शाम तक मिल जाए वाइट एज के प्रोडक्ट्स। सच्ची बोले ये तो अच्छी बात है ना, थोड़ा खर्चा भी कर लिया कर। और वासु भाई कहते अदी सिडो असांजा ही बकला के तमा सा गड प्यारा गुजरंदा है, आई मुझा भी यकीन करो। मोहम्मद अली खोसो कहते हैं एक हफ्ते के लिए मेरा कोई सेलफोन ले जाएगा, पूरा हफ्ता वो मुझे भी ले जाए अपने साथ। चले ये ठीक है। अच्छा आदिल तमा जो गाना सुभाणी बुधंदासीं, ठीक है।

हा बाबा एतरी ॻाल्हि ते छो नाराज़ थी वेंदा आहिनि, ढोल वरी पोइ मञींदा न ई अच्छा ये गाना बहुत ही प्यारा गाना है, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ जी आप हमारा शो सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाइए, डी स्किन फेस वॉश आपके लिए आप लगाइएगा, और साथ में व्हाइट एज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए। तो जनाब आप लाजमी जो है वो ट्राई करके देखिएगा। बिलाल अली कहते हैं हर रोज कोई आपके शो की लिंक मेरे आईबी में शेयर करता है, आज सोचा ओपन करके देख लूं। चलिए आपने बहुत अच्छा किया। वैसे तो अब हमारे प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म होने को आ रहा है बिलाल, सो आपको वेलकम करते हैं, कल आप मुझे 1 बजे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अरे किशोर भाई कहते नन तवान जो शो इत मुखे एक्टिव रखे थो अल्लामा सदको। मोहम्मद सुमान कहते आज का सवाल ना ऐसा है जवाब देने से पहले मायूस हो जाते हैं। बात वैसे सही आप कह रहे हैं। और दर्द दिल कहती है पता नहीं क्यों, पता करवाए ना, मैंने जानना था।

हम वाकई इतने सादा और बेवकूफ लोग हैं, हम वाकई इतने सादा और बेवकूफ लोग हैं कि जरा सी अपनाइए, थोड़ी सी तवज्जो और चंद मीठे अल्फाज मिले तो हम अपनी जात के सारे पर्दे खुद ही हटा देते हैं, दिल की वो बातें भी कह देते हैं जो बरसों खामोशी में दफन रहनी चाहिए थी। हमें ये गलत फहमी बिल्कुल हो जाती है कि सामने वाला हमें समझ गया है, यही वो मकाम है जहाँ दिल सबसे ज्यादा लुटता है, क्योंकि हर मुस्कुराहट सच नहीं होती, हर अपनाइयत खालिस नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ इसलिए करीब आते हैं कि हमें खुली किताब बनाकर हमारे लफ्जों से अपने फायदे की मतलब निकाल सके। बहुत से लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब तलाश करते हैं, वो खुद को आपका खैर ख्वाह जाहिर करते हैं, लेकिन हकीकत में उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई और

ओके जनाब, से प्रोग्राम व्हाइट एज एंड एज इन ब्यूटी शो का जो वक्त है वो खत्म होने को आ चुका है। साइमा मीर, बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसे डाटा करी बच्चों को। और ये जी हजार खान भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। गुलाम रहीम बलोच, हमें सुन रहे हैं, आपका शो पसंद आ रहा है, थैंक यू सो मच। ओके जी, और यहीं पर लेते हैं आप लोगों से इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात आपकी और हमारी होने वाली है कल वाले प्रोग्राम में, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है डेली बेसिस के ऊपर। और कहीं पर कोई गलती हो गई तो हम माजरत ख्वाह हैं, जिनके फीडबैक्स रह चुके हैं उनसे माजरत करते हैं, जिनके गाने रह चुके हैं आज के प्रोग्राम में उनसे जनाब यही कहूंगी कि कल आके आगे गाने लगा दूंगी। हाँ वाकई मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, कहीं मैं गजनी तो नहीं हो गई। मैं वाकई बहुत सारी बातें भूल जाती हूँ और प्रोग्राम में बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाली होती है लेकिन वो भी भूल जाती हूँ। वाकई लगता है कि मैं अब गजनी होती जा रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप जो है वो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया करें, ये आप मत भूलिएगा, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज्यादा वाला, मुकलानी ना है बाबू, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, bye bye, love you all.

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: हुई है मिनिमम वेज में आप कितना इजाफा कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन आप सैलरीड क्लास के लिए कितना इंक्रीज लेके आ रहे हैं। सेकंड सर क्वेश्चन मेरा ये है कि गुज़श्ता दिनों प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कहा कि क्योंकि आज आपने बात की है पैना बॉन्ड्स इश्यूएंस की, प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने कहा कि बॉन्ड्स इशू करना इस पे जश्न नहीं मनाना चाहिए, इस पे शर्म आनी चाहिए। आज सर इसी तरह का वर्ड था मेरे पास, अभी भी आई थिंक रिगार्डिंग है तो मैं आपको कहेंगे।
2: पहली बात कर देता हूं फिर मैं एहसन इकबाल साहब को आई वुड वांट टू गिव द फ्लोर। आपको पता होना चाहिए।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
4: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003

उसे लुकमे तोड़ तोड़ कर खिलाता। वो सोचती है अगर मेरा शोहर अंधा ना होता शायद इसके साथ रह ना पाता, और वो अपना आप इस हाल में इसे दिखाने से पहले ही मर जाता। और फिर इसी दौरान उसकी बीवी का इंतकाल हो गया। इस सदमे में शौहर ने अपना सब कुछ फरोख किया, दूसरे शहर जाने लगा। तो रास्ते में किसी ने आवाज दी, अब तक तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी आंखें बनी हुई थी, वो हाथ कोई तुम्हें चलाती थी, वो तुम्हारी मदद करती थी, हाथ पकड़ कर राह पे चलाती थी, वो तुम्हारी मदद करती थी। अब शहर में अकेले कैसे जाओगे, कैसे रहोगे? उस शख्स ने कहा, भाई मैं अंधा नहीं हूँ, अंधा बना हुआ था। यह एहसास मेरी बीवी के लिए बहुत तकलीफ देह होता कि मैं उसकी बदसूरती को देख रहा हूँ। ये कहकर वो शख्स शहर छोड़कर चला गया। कहने वाले कहते हैं जब उस शख्स का इंतकाल हुआ, हलकत उसे अल्लाह का वली कहकर पुकारती थी। सुभान अल्लाह। ये एक हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द आपने भी देखा होगा कभी कभार कहीं ना कहीं, खावन जिसे मजाजी खुदा का लकब दिया जाता है, उसके दर्जात बहुत होते हैं, जबकि ये सख्त गलत किस्म की बात है। अल्लाह ताला ने इस बात को सख्त पेश आती है तो बहुत से लोग नापसंद किया गया है। और दूसरी बात ये कि जो शख्स आपके साथ जिंदगी के आखिरी सांस तक अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ शख्स आपके साथ आखिरी होता है, बुरे वक्त में आपका साथी होता है, वो ऐसा डिजर्व नहीं करता। हाँ, अगर आपके जीवन साथी की कोई बात, कोई आदत आपको नापसंद हो या किसी बात पे आपको गुस्सा हो, तो आप उसे बहुत प्यार मोहब्बत से भी तंबीह कर सकते हैं। ये जहालत वाले रवैये आपको जेब नहीं देते, क्योंकि आपको अशरफुल मखलूकात कहा गया है। तो एहतियात किया करें, स्पेशली उस वक्त से डरें जब कोई रब के सामने आपका नाम लेके रो पड़े। तो बहुत ही कड़ा और सख्त वक्त होगा वो। आई विश के हमारी और आपकी जिंदगी में इस तरह के मामलात कभी भी हमें दरपेश ना आए। आमीन। आज के प्रोग्राम में आपके साथ आरजी गुलनाज, एज यूजुअल 3:20 हो चुके हैं यहाँ, और आपको बताते चले शाम 5 बजे तक हम और आप ऐसे ही गपशप करने वाले हैं एक अच्छे सफर में। कौन सी खसूसियात होनी चाहिए आपकी सोच के मुताबिक, आज आपने हमें ये बताना है बेहतरीन हम सफर कैसा होता है। और ये बताने के लिए आपने डायल करना है 03136615688 SMS के लिए। मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MP के लिखना है, स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर। मेरी आप सबके लिए दुआ है रबी करीम आपकी गुलशन हयात को अपनी नेमतों की खुशबू से हमेशा मुअत्तर और माला माल रखे, खुशियों के लाजवाल खजाने के साथ

0: अबाउट में ये कहूँगा कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए और कोई तजाद नहीं होना चाहिए। अच्छे हम सफर की ये एक इक्वलिटी होनी चाहिए। तो मैं बिलीव करता हूँ ऐसे लोगों को इस चीज को फॉलो करें।
1: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप शामले प्रोग्राम हुए, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ओके, एक अच्छा हम सफ़र कैसा होता है ये आज आपने बताना है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब, वेलकम कहेंगे, कौन बात कर रहा है?
2: अजी हरचंद राय, कानूनी नेक और खास से सुलेमान
1: का है। वेलकम कहेंगे अदा सुलेमान, रेडियो बंद कर दिया आपने?
2: हाँ बंद कर दिया
1: जी। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से? ठीक हो गया अदा, बहुत शुक्रिया, आप शामले प्रोग्राम हुए। वालेकुम अस्सलाम राहिला, बहुत शुक्रिया, आप शामले प्रोग्राम हुई चंदा, थैंक यू। चले अच्छी बात है, गुड लक आपको, दोनों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, आपने रेडियो खोला हुआ है तो बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, माजरत खाऊं आपकी कॉल मैंने डिस्कनेक्ट की है। और जनाब आज मैंने आपसे पूछा है कि आपने मुझे बताना है एक अच्छे हम सफ़र में कौन सी खसूसियात होती हैं, अच्छा हम सफ़र कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, इस टाइप से आज जो है आपकी आरा आपने हम तक पहुँचानी है और उसके लिए नेक्स्ट कॉलर को शामली प्रोग्राम होने का मौका देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा है? कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
3: जिसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत
1: हो। अच्छे हम सफर में मतलब ये वाली आदत लाजमी होनी चाहिए। चले ठीक है दीके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक अच्छा हम सफर कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, कौन सी आदत है जो उसमें लाजमी होनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, कौन बात कर रहा है?
4: बाजी आपको तो बाजी का मरी जा गला है जो गरीब गुलाम मरी।
1: क्या कहेंगे टॉपिक के हवाले से?
4: बाजी टॉपिक के हवाले से
1: ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। सुठो दोस्त के साथ, अल्लाह माफ करे, सुठे दोस्त के साथ ये लाइफ पार्टनर वाला मामला नहीं बनेगा। ठीक है, दोस्त दोस्त की हद तक ही होता है। और ये जो मैरिजेस पाकिस्तानी माशरे में होती हैं, दो ही होती हैं, या पेरेंट्स की मर्जी से अरेंज मैरिज या लव मैरिज होती है। एनीवे जनाब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये कौन है? ये जो है नेम के बगैर आपका मैसेज मिला मुझे, जनाब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सिर्फ ये लिखा हुआ है मैसेज में, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। जनाब बातों के सिलसिले को ब्रेक देने का वक्त है, यहाँ छोटे से तशरीफ़ वक्फे की जानी जाएंगे, इस ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राब्ते लाइ 0301 91 896

ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

वफाकी हुकूमत जे मुल्क में महंगाई 38 सैकड़ो ताईं घटि करण जी दावा, तरक़ी जी शरह हदफ़ खां घटि थियण जो एतिराफ़, ॾेई नाणे जा ज़खीरा बि मुस्तहकम हुअण जी दावा। वफाकी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। ॾाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब शहवाद चैलेंजेस बावजूदि मैशियत सुठी कारकर्दगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मैशियत जो काथो 452 अरब 10 करोड़ डॉलर थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब 10 करोड़ डॉलर आहिनि। मुआशी तरक़ी जी शरह बि 3.7% रही। खिते ॾिसो त हाल ठीक हुजे त 4% ताईं तरक़ी वारी शरह हासिल करे वञूं हा। मालियाती खसारो 0.7% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.99% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.7% रही आहे। पाणी बहरान ते वरी वज़ीर मुराद अली शाह जो वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे ख़त। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरिहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शुरू चयो आहे त इरसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी खोड खणी रहियो आहे। सिंध में पाणी खोड दौरान डैम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखे पंजाब खां पहिरियां थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलणु घुर्जे। पंजाब चश्मा जेलम केनाल समेत फिल्ट केनाल ज़रिए पाणी खणी रहियो आहे। गुज़िरियल साल हिन सीज़न में गुड्डू वटि 1,35,000 क्यूसिक पाणी मिलियो। हाणे रुगो 75,000 क्यूसिक पाणी मिली रहियो आहे। सिंध सां गॾु बलोचिस्तान बि पाणी खोट सबबि मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी खोट आहे त बराबरी जी बुनियाद ते विराई वञे।

सिंध बलोचिस्तान में पाणी जी शदीद खोटवारो मामिलो क़ौमी असेंबली ताईं पहुची पियो। पीपल्स पार्टी एम एन ए जी सिंध ऐं बलोचिस्तान जी घुर्ज मूजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन भुट्टो जवाब ॾींदे चयो त सिंध में 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी खोट खे मूड़े रहियो आहे। पाणी बाबति इरसा में थियल फैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। सिंध में शामिल हो ऐं पी पी एम एन ए नवीद कमर चयो त इरसा जा अंगनि अखरनि सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे। इरसा कानून खां मथां फैसला कया आहिनि। वफ़ाक़ी वज़ीर मोइन भुट्टो चयो त इरसा में इतफ़ाक़ राय सां फैसला थिया आहिनि। अॼु सिंध खे 1,40,000 क्यूसिक पाणी जारी थियो आहे। पी पी एम एन ए शाज़िया मरी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त न आहिनि। इरसा पाणी वारी 1991-93 ते अमल दरामद न करे रहियो आहे। सिंध में सूरत हाल संगीन आहे।

0: आमों की सर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी खुशखबरी हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़ रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 0385-569-0300-003-8556-9।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहराबपुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहराबपुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड़ बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-3592-120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी, बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट पास अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: माशाला फौजी पाई फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 आई तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
4: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं।
5: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतीज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03-00-00-27-234। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03-01-38-65-453।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन।
6: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
7: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-00-32-04-372 आई 02-42-46-01-00।
8: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
9: Yeah!

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंकर हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप, कोटली कबीर रोड मेरापुर, कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूरु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण, MA, DHMS सिंध, RHMP इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, नवाब शाह। हर अरबा, खमीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर

0: चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियो बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते

नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120।

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

वफाकी हुकूमत जी मुल्क में महंगाई 38% ताईं घटि करण जी दावा। तरक्की जी शरह हदफ खां घटि थियण जो एतराफ़। वॾे नाणे जा ज़खीरा बि मुस्तक़म हुअण जी दावा। वफाकी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकरदगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मईशत जो काथो 452 अरब 10 करोड़ डॉलर थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब 10 करोड़ डॉलर आहिनि। मुआशी तरक्की जी शरह बि 3.7% रही। हिते जी सूरतहाल ठीक हुजे हा त 4% ताईं तरक्की वारी शरह हासिल करे वञू हा। मालियाती खसारो 0.5% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.79% तरक्की कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक्की कई। वॾियुनि सनअतनि जी तरक्की जी शरह 6.5% रही आहे। सिंध में पाणी जी शदीद बोहरान ते वॾे वज़ीर बाद अली शाह वज़ीराज़म शहबाज़ शरीफ खे ख़त लिखी छॾियो। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरिहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो आहे त इरसास सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी कोट बर्दाश्त करे पियो। सिंध में पाणी कोट दौरान डेम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखी पंजाब खां पहिरीं थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलणु घुर्जे। पंजाब चश्मा जहलम केनाल समेत फ्लड केनाल ज़रिए पाणी खणी रहियो आहे। गुज़िरियल साल हिन सीज़न में गुडू वटि 1,35,000 क्यूसिक पाणी मिलियो। हाणे रुगो 75,000 क्यूसिक पाणी मिली रहियो आहे। सिंध सां गॾु बलोचिस्तान बि पाणी कोट सबबि मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी कोट आहे त बराबरी जी बुनियाद ते विरिहायो वञे।

सिंध ऐं बलूचिस्तान में पाणी जी शदीद कोट वारो मामलो क़ौमी असेंबली पहुची वियो। पीपल्स पार्टी एमएनएस जो सिंध ऐं बलूचिस्तान खे घुर्ज मूजिब पाणी ॾियण जो मुतालबो। पाणी मामलनि वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मुइन वटू जवाब ॾींदे चयो त सिंध 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी खोट खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पाणी बाबति इर्सा में थियल फ़ैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। इन्हनि फ़ैसलनि में सिंध बि शामिल हुई। पीपीएमएनए नवीद कमर चयो त इर्सा जा अंग अखर सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे, इर्सा कानून खां मथां फैसला कया आहिनि। शाज़िया मरी चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त नाहिनि। इर्सा पाणीअ वारे 1991 ठाह ते अमल दरामद न पई करे।

अमरीकी सदर ट्रंप अॼु राति ॿीहर ईरान मथां हमलनि जी धमकी ॾेई छॾी। ट्रंप चयो आहे त ईरान खे अॼु राति ज़बरदस्त निशानो बणायो वेंदो। ईरान सां इहो ई कंदासीं जेको वेनेज़ुएला सां कयो हो। ईरान जी बहरिया, फज़ाइया ऐं दिफ़ाई सलाहियत मुकमल तौर ख़तम थी चुकी आहे। जल्द गैस ऐं तेल जी मार्केट में असांजी हिकु हटी क़ाइम थींदी।

में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: सिहत बाबति ॼाण ॾेई रहियो आहे। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि। माहिर अमराज़ गुर्दे, पिते ऐं मसान जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो। संधनि जो सूर, जोड़नि गोॾनि जो सूर, नक कन गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूर, अधु मथे जो सूर, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहण, कन जो सूर, घटि ॿुधण में अचणु, फालिज, खंघि, टीबी, मादे जो सूर, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधणु, जिगर, हेपाटाइटिस बी सी या इन खां अलावा चेहरे जो रंग सांरो आहे, चेहरे जी ख़ारिश, फट, फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि जो वज़न न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहब कामयाब इलाज कंदा आहिनि। 0301-2196-8051 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। 0301-2196-8051 ते तव्हां असांजे प्रोग्राम में भर कॉल करे शामिल थी सघो था, कंहिं बि बीमारी बाबति डॉक्टर साहब खां मालूमात वठी सघो था। डॉक्टर साहब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि। डॉक्टर साहब, जेके पित जी पथरी थींदी आहे पाण, या गुर्दनि जी पथरी आहे जेके माना उन्हनि खे ऑपरेशन जी ज़रूरत न आहे, जीअं नक जी हॾी वधियल आहे, गले जा गुदूद वधियल आहिनि, या मां ॾिसो फाइल्स जो इलाजु कंदा, अहिड़ियूं मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि जेके माना एलियोपैथिक में ईअं उन्हनि खे ऑपरेशन कयो वञे थो, उन्हनि जो इलाजु सिर्फ़ु ऑपरेशन ॿुधायो वञे थो, पर अव्हां वटि होम्योपैथिक में ख़ासि तौर ते जेके मरीज़ सिहतयाब थियनि था ऐं तव्हांखे व्यूज़ ॾेई वञनि था, जेके अव्हां व्यूज़ हिते हलाईंदा आहियो, त उन बारे में अव्हां छा चवंदा?
1: जी साईं, बिल्कुलु, उन हवाले सां बि जीअं मुख़्तलिफ़ मिसाल ॻाल्हि जो हिकिड़ो शइ टीका पेन, कंहिंखे कुन रग जो सूर हूंदो आहे, रग ब्लॉक हूंदी आहे, पाइल्स आहे, ऐं वरी जेको आहे सो मिसाल किडनी स्टोन हूंदी आहे, गाल ब्लैडर स्टोन हूंदी आहे, प्रोस्टेट ग्लैंड हूंदो आहे, उन्हनि जो होम्योपैथिक में एतिरी सलाहियत मौजूदु आहे जेकी बग़ैर ऑपरेशन जे इन्हनि जो कामयाबु इलाजु मौजूदु थींदो आहे। मिसाल ॾिसो, गुर्दे जी पथरी आहे, चाहे हिकिड़ी हुजे, चाहे जेको आहे सो जेतिरियूं बि हुजनि, ऐं 2 mm हुजे या 20 mm हुजे, उहो बिल्कुलु असां वटि उहे पेशंट्स जा व्यूज़ इन हवाले सां जॾहिं हुनखे फ़र्क़ु पवंदो आहे त उहे ख़ुदि जेको आहे सो व्यूज़ फीडबैक ॾींदा आहिनि, लाइव अची बि फीडबैक ॾींदा आहिनि, असां वटि बि अची ऐं व्यूज़ रिकॉर्ड कराए वेंदा आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां गाल ब्लैडर स्टोन आहे, गाल ब्लैडर स्टोन में बि चाहे पितो पथरियुनि सां भरिजी वञे, चाहे 2 mm खां 30 mm जूं स्टोन्स हुजनि, उहे जेको आहे सो ॻरी ऐं ख़तमु थी वेंदियूं आहिनि, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु होम्योपैथिक जर्मन मेडिसन्स जे हवाले सां जेको असां कामयाबु इलाजु कंदा आहियूं, कामयाबु ट्रीटमेंट ॾींदा आहियूं, उनमें काफ़ी जेको आहे सो फ़र्क़ु पइजी वेंदो आहे। चाहे बवासीर जे हवाले सां ॻाल्हि कई त उहो बि जेको आहे सो इन ई ऑपरेशन जे बग़ैर ऑपरेशन जे होम्योपैथिक दवाउनि सां बिल्कुलु क्लियर थी वेंदो आहे। चाहे प्रोस्टेट ग्लैंड कंहिंखे गदूद आहे, प्रोस्टेट कंहिंजो वधियल आहे, उनजो बि बग़ैर ऑपरेशन जे, हर्निया जो ऑपरेशन थींदो आहे, हर्निया बि असां वटि बग़ैर ऑपरेशन जो जेको आहे सो कामयाबु इलाजु मौजूदु आहे। चाहे मिसाल ॻाल्हि जो हिकिड़ो मुख़्तलिफ़ ॿियूं जेके मोरूसी जेके ॿियूं बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, या चाहे जेको आहे सो दम आहे कंहिंखे पुराणो, उनजो बि असां वटि कामयाबु ट्रीटमेंट अस्थमा जे हवाले सां, एलर्जी जे हवाले सां कामयाबु इलाजु मौजूदु आहे। या साइनसाइटिस, कंहिंखे नक जी हॾी जे मथां गोश्त वरी वेंदो आहे, या ट्रॉन्सलाइटिस थींदा आहिनि, गले जा गदूद वधी वेंदा आहिनि, उन्हनि जो बि मेडिकल में ऑपरेट थींदो आहे, ऐं पोइ गले जा गदूद ऑपरेट करे जेको आहे सो कढिया वेंदा आहिनि।
0: तव्हांजे मौज़ू खे अॻिते वधाईंदे हलंदासीं, पहिरियां वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, त पहिरियां हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। समीन वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, पहिरियां हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गॾु जो ॿुधंदा रहो जीअं मेहरापुर FM 94, प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि।
2: खूबसूरतीअ जो असल राज सिर्फ़ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद वाइटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए।

केयर रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स। एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592

0: वारी वारी जेको आहे सो यानी विद इन मंथ में उनजो उहे ई अठ ई स्टोन जेको आहे सो निकिरी वियूं ऐं उहो पेशंट जेको आहे सो पछाड़ी काफ़ी सारियूं असांखे दुआऊं बि ॾींदा विया ऐं ॿिया बि खोड़ सारा पेशंट्स उन्हनि मोकिलिया। इहे न सिर्फ़ किडनी स्टोन्स जे हवाले सां, जेकॾहिं बग़ैर ऑपरेशन जे हवाले सां ॻाल्हि कजे पाइल्स जी, त पाइल्स में बि अहिड़ा पेशंट खोड़ सारा आया जेके बग़ैर ऑपरेशन थी, चाहे फिस्टूला हुजे चाहे पाइल्स हुजे, उहे उन्हनि जा ख़तमु थी विया। या गदूर जे हवाले सां ॻाल्हि कईसीं त गदूर में बि घणनि खे प्रोस्टेट ग्लैंड जंहिंजो वधी वेंदो आहे उनजो असां जंहिंजो मिला 40-40, 60-60, 100-100 जेको आहे सो मिलीग्राम थी वेंदो आहे, उहो बि जेको आहे सो माशाल्लाह असां वटि बिल्कुलु पेशंट सही थी आहे। सो इहो हिकिड़ी शिफ़ा जी ॻाल्हि आहे, शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, लेकिन ॻाल्हि आहे होम्योपैथिक दवा जे हवाले सां, त उहो अव्हांखे ताईं पहुचाईसीं। या नक जी हॾीअ जो गोश्त वधी वेंदो आहे, उनजो बि जीअं साॼो किसो बि असां खोलियोसीं ऐं ॻाल्हि अध में रहिजी वई, त चाहे टॉन्सिलाइट्स हुजनि या गले जा गदूद हुजनि, त उन्हनि जो बि जॾहिं असां बेसिकली हिकिड़ा नेज़ल पुलेप्स थींदा आहिनि जेके एलर्जी जे करे जेको रेशो नक में अची वेंदो आहे ऐं पोइ उहे गदूदनि जी सूरत अख़्तियार करे वेंदा आहिनि, उन्हनि जी जॾहिं असां मेडिसिन्स ॾींदा आहियूं त अलहमदिल्ला उहे बि जेको आहे सो बिल्कुलु उन्हनि जी एलर्जी बि ख़तमु थी वेंदी आहे ऐं उहे गदूद बि ख़तमु थी वेंदा आहिनि। छो जो उन्हनि जे ॾिसो हिकिड़ो नाज़ुक मसइलो हूंदो आहे, जॾहिं उहो जा गदूद निकिरी ईंदा आहिनि त न हू साह सही खणी सघंदा आहिनि, न वरी जेको आहे सो सही ॻाल्हाए सघंदा आहिनि, उन्हनि खे न बिल्कुलु नास बंदि हूंदी आहे, राति जो सुम्ही न सघंदा आहिनि। अहिड़े क़िस्म जे मरीज़नि खे जेके अहम निशानियूं हूंदियूं आहिनि उनखे एलर्जी न छॾींदी आहे, खूंगरा उन्हनि जा आम हूंदा आहिनि, ऐं जॾहिं अव्हांखे ख़बर आहे त जॾहिं उन्हनि जो नक जी जेके गदूद वधी वेंदा आहिनि उनजे करे, छो जो ईयर नोज़ थ्रोट हिकिड़ो ई रस्तो हूंदो आहे कनु नक ऐं गले जो, पोइ जॾहिं उहो रेशो ॻणंदो आहे या गदूद ठही वेंदा आहिनि त पोइ उन्हनि खे कननि ते बि ताड़ी चढ़ी वेंदी आहे, यानी उहे कननि खां न ॿुधी सघंदा आहिनि ऐं कननि खां बि रेशो वरी ॻणणु शुरू थी वेंदो आहे, ऐं उहो ई रेशो वरी जेको आहे सो जॾहिं कन ब्लॉक थी वेंदा आहिनि त वरी गले जे तरफ़ जेको आहे सो कंदा आहिनि, पोइ यानी वरी गले में उन्हनि खे जेको आहे सो इहो जेको आहे सो जेके निडियलेस बि चयूं ज़ुकाम थी वेंदो आहे या चेस्ट कंजेक्शन थी वेंदी आहे, बलगम पोइ उन्हनि जो न निकिरणु म्यूकस ठही वेंदो आहे, त उनजो बि असां वटि होम्योपैथी उन अहिड़े क़िस्म जे पेशंट्स जे लाइ फ़िलहालु फर्स्ट एड तौर ते मां ॿुधाईंदो आहियां त उन्हनि खे गरम पाणी जी भाप जेको आहे सो वठणु घुरिजे, या गरम पाणी सां जेको आहे सो उन्हनि खे गराड़ा करणु घुरिजनि ऐं गरम पाणीअ सां जेको आहे सो नमक विझी उनजो नक साफ़ु करणु घुरिजे, त इहा हिकिड़ी फर्स्ट एड आहे। लेकिन उन्हनि जो मुकमल ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में, छो जो ऑपरेट माण्हू केतिरो कराईंदो, ऑपरेट कराइण खां पोइ बि इहे केसिस ॾिसण में आया आहिनि, चाहे साइनोसाइटिस जा हुजनि चाहे टॉन्सिलाइटिस जा हुजनि, ऑपरेशन कराइण खां पोइ बि जेको आहे सो वरी उहे साॻई जेको आहे सो उन्हनि जा गदूद वधी वेंदा आहिनि, ऐं इहो ई हाल साॻोई स्टोन्स जो बि हूंदो आहे, तव्हां चाहे स्टोन कढायो बि ऑपरेट करायो लेकिन ऑपरेशन खां बाद में बि जेको आहे सो वरी स्टोन्स ठही वेंदा आहिनि। असांजो होम्योपैथिक दवाउनि में इहो ई जेको आहे सो हिकिड़ी मौजज़ाना करामतूं रखियल हूंदियूं आहिनि, त जॾहिं हिकिड़ी त ऑपरेशन खां बग़ैर पथरी निकिरींदी आहे लेकिन दवा अहिड़ो कमु करे वेंदी आहे त वरी उहा पथरी न ठहंदी आहे, यानी एतिरा पंहिंजा असरात छॾे वेंदी आहे। सो इन हवाले सां होम्योपैथिक दवा तमामु जेको आहे सो आई, हिकु त होम्योपैथिक दवा जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, हिकु त अव्हांखे फ़ाइदो जेको आहे सो यानी जड़ खां वठी मर्ज़ खे ख़ात्मो कराईंदी आहे ऐं हिन जो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, त पोइ असां छो न जेको आहे सो उन रस्ते ते अचूं जेकी असांखे को फ़ाइदो ॾिए ऐं को नुक़सान खां अलावा जेको आहे सो फ़ाइदो ॾिए। सो उहो आहे होम्योपैथिक दवा। होम्योपैथिक दवा हींअर त जग जहान में मशहूरु आहे ऐं जेके बि असांजा जेको असे मशाला चाहे हिते चाहे जेको आहे हींअर ॿाहिरि काफ़ी सारा पेशंट आहिनि जेके असां वटि होम्योपैथिक मेडिसिन्स ते ई जेको आहे हूंदा आहिनि।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहराब एफएम 94 जो ही आवाज़ तव्हां जे समातुन ते पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिब सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाब शाह असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि महिरबानी मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे डॉक्टर साहिबु असांजे स्टूडियो में ईंदा आहिनि। अव्हांखे हाणे कराची, नवाब शाह, हैदराबाद या इस्लामाबाद वञण जी ज़रूरत नाहे, उहो ई सिंध जो मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे। 0301-2196-851 असांजो लाइव कॉल जो नंबर आहे। होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं अस्पताल नवाब शाह डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु। गुर्दे जी पथरी आहे, मसाने जी पथरी आहे, इन खां अलावा गले जा गुदूद वधियल आहिनि या नक जी हॾी वधियल आहे, उनजो बग़ैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो। अव्हांखे ऑपरेशन कराइण जी का बि ज़रूरत नाहे, कॾहिं बि अव्हांखे मायूस नाहे थियणो। गोॾनि में सूरु आहे, संदनि में सूरु आहे, जोड़नि जो सूरु आहे, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछो, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालज, खंघ, टीबी, मादे जो सूरु, मादे जी अल्सर, तिरी जो वधणु, जिगर, हेपाटाइटिस बी, सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, मर्दनि ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं डॉक्टर साहिबु मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। हर जुमे, छंछर ऐं आचर ते, यानी हफ़्ते जा 3 ॾींहं डॉक्टर साहिब जी जेकी चेकअप फीस हूंदी आहे उहा बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बिल्कुलु मुफ़्त हूंदी आहे, जेका जर्मन फ्रेंचाइज़ वारा बर्दाश्त कंदा आहिनि, जेके डॉक्टर साहिब जी फीस बि अफोर्ड नथा करे सघनि। उन्हनि जे लाइ इहा हिकिड़ी फैसिलिटी रखी वई आहे डॉक्टर साहिब जे तरफ़ां, डॉक्टर साहिब जी जेकी कंपनी आहे उन जे तरफ़ां, जीअं उहा डॉक्टर साहिब खे पंहिंजो चेकअप कराए सघनि। इहा ॻाल्हि अव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, नोट कराईंदा हलंदासीं त अव्हांखे दवा स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि चीअ मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़ अव्हांजे समातुनि ताईं पहुचे पियो। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि, जेकी मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति तव्हांखे ॼाण ॾेई रहिया आहिनि। 0301-2196-851। डॉक्टर साहिब खे भलीकार चवंदासीं, ख़ासि महिरबानियूं आहिनि डॉक्टर साहिब जूं जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में डॉक्टर साहिबु आया आहिनि। ऐं डॉक्टर साहिब जी इहा हिकिड़ी मोहबत आहे जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में ईंदा रहनि था। उर्दूबी ख़ासकली खां ई परवानो ज़ुल्फ़िकार अली ख़ासकली साहिब जो ख़ासि महिरबानियूं, मोहबतूं आहिनि। प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, तव्हां असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। 0301-2196-851 ते कॉल करे ऐं शामिल थी सघो था। प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो ही आवाज़। डॉक्टर साहिब, पंहिंजे मौज़ू खे अॻिते वधाईंदा हलूं था। इन खां अलावा ॿिया जेकी मुख़्तलिफ़ असांजा प्रोग्राम में माना जेकी मरीज़ आहिनि या जेके व्यूज़ ॾींदा रहनि था, उन्हनि जे बारे में असीं जीअं तव्हां गुर्दे जी, इन जी मसाने जी पथरी जी ॻाल्हि कई, इन जी पित जी पथरी जी, ख़ासि तौर ते माण्हू चवंदा आहिनि त साईं पित जी पथरी नाहे निकिरी सघंदी, ऐं तव्हां वटि ॾिसो हिकिड़ो होम्योपैथिक में निकिरी वञे थी, त इन जे लाइ अव्हां छा सजेस्ट कंदा आहियो, ख़ासि तौर ते ट्रीटमेंट खां अलावा जेकॾहिं उनखे थिए थो, या वरी जेकॾहिं पितो माण्हू कढराए था अचनि पिया, उन्हनि सां वरी मादे जो मसइलो थी थो वञे पियो, उन्हनि खे छा चवंदासीं?
2: तमामु ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे ऐं वाक़ई बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे त जॾहिं पितो जेके असांजा फैट्स हूंदा आहिनि उहो पितो अख़राज कंदो आहे, पर जॾहिं पितो पंहिंजो कमु छॾे वेंदो आहे या पितो जॾहिं रिमूव थी वेंदो आहे त पोइ सारो प्रॉब्लम, सॼो लोड जेको आहे सो न मादे ते अची वेंदो आहे, ऐं पोइ मादो हमेशह डिस्टर्ब रहंदो आहे, उनजे करे पेशंट खटियूं खटियूं ढकारियूं उनखे ईंदियूं आहिनि, वात में पाणी अची वेंदो आहे, पेट फूलजी वेंदो आहे, ऐं हां में सूरु पवणु शुरू थी वेंदो आहे। इहा तकलीफ़ ख़ासि करे राति जे टाइम में जेको आहे सो उन पेशंट खे थींदी आहे। जिन खे इहे थींदड़ आहिनि उहे ज़रूरु जेको आहे सो इन ॻाल्हि खे नोटिस कंदा हूंदा त उन्हनि खे इहा तकलीफ़ राति जे टाइम में ऐं तमामु हिकिड़ी दर्दनाक तकलीफ़ थींदी आहे ऐं तमामु घणी तकलीफ़ जॾहिं वञी उहो हॉस्पिटलाइज़ थींदा आहिनि, ड्रिप्स वग़ैरह लॻंदियूं आहिनि ऐं इंजेक्शन्स वग़ैरह, तॾहिं उनखे आराम मिलंदो आहे। लेकिन होम्योपैथिक में जेको आहे सो जॾहिं ट्रीटमेंट ॾिनी वेंदी आहे त उन में इहो गाल ब्लैडर खे रिमूव करण जो सवाल ई पैदा न हूंदो आहे, छो जो इहे स्टोन्स जेको आहे सो निकिरी वेंदा आहिनि ऐं गाल ब्लैडर पंहिंजे असल सूरत में हूंदो आहे ऐं वरी पेशंट जेको आहे पेशंट जो मादो सही तरीक़े सां कमु कंदो आहे। सो इन जे करे ई जेको आहे सो अच्छा जेकी तव्हां पुछो त जेकॾहिं इलाज खां अलावा जेकी देसी ॾसनि जे हवाले सां असां ॻाल्हि कयूं त ॾिसो कुदरत जेको आहे सो उनजी हर शइ में शिफ़ा रखियल आहे। जी मिसाल जैतून जो तेल आहे, अल्ला ताला जैतून जो ज़िक्र क़ुरान शरीफ़ में कयो आहे ऐं जैतून जे तेल में शिफ़ा आहे। अहिड़े तरीक़े सां 40 ॾींहनि ताईं हिकिड़ो कामयाबु नुस्ख़ो मां हमेशह ॿुधाईंदो ईंदो आहियां ऐं हाणे त जेको आहे सो हर को अव्हांखे ॿुधाईंदो बि हूंदो त 40 ॾींहनि ताईं जेकॾहिं हिकिड़ो चमचो सुबुह जो नेराने नीम गरम गिलास पाणी में
0: अवां जेको आहे सो हिकु चमचो जैतून जो तेल हिकु चमचो माखी ऐं हिकु चमचो लीमे जो रस जो मिलाए तव्हां पीआरींदो पेशेंट खे त उहो अल्लाह ताला जी महिरबानी सां उहो एतिरी जेको आहे सो पंहिंजी ताक़त रखे थो जो उन पथरी खे जेको आहे सो बिल्कुलु ॻारे थो ऐं उहे जेके असरात आहिनि जंहिंजे करे थिक वॉल्स थी वञनि थियूं ऐं जेको आहे सो गाल ब्लेडर जूं ऐं जंहिंजे करे उन में चर्बी इकट्ठा थी वञे थी उहा गलणु शुरू थी वञे थी ऐं पेशंट खे जेकी तकलीफ़ आहे उहा घटिजणु शुरू थी वञे थी बेशक मेडिसिन्स पंहिंजियूं ॾींदा आहियूं लेकिन इहे बि शयूं गॾु पेशंट खे जेको आहे सो ॾियण सां काफ़ी अफ़ाको अची वेंदो आहे त मां हमेशा चाहे अच्छा इहा ई साॻियो ई नुस्ख़ो तव्हां चाहे किडनी स्टोन कंहिंखे आहे उनखे बि तव्हां ॾींदो त उनजो बि इहे स्टोन जेको आहे सो ॻरणु शुरू थी वेंदा आहिनि लेकिन ख़ासि करे गाल ब्लेडर जे हवाले सां ॻाल्हि कयां त गाल ब्लेडर में इहो नुस्ख़ो तमामु कामयाबु आहे ऐं असां इहो ई नुस्ख़ो जेको आहे सो दोस्तनि खे ॿुधाईंदा आहियूं इन मां काफ़ी सारो
1: सर तमामु इहो बहितरीनु हिकिड़ो तव्हां नुस्ख़ो ॿुधायो मां चवंदुसि इहो नुस्ख़ो अञा बि तव्हां रिपीट कयो जेके दोस्त न सम्झी सघंदा आहिनि छो जो हिकु दफ़ो पहिरियों उन्हनि जो तवजो बि घटि हूंदो आहे त भले हिकु दफ़ो रिपीट कयो जीअं उहे बि आसानी सां उनखे नोट बि करे सघनि ॿुधी बि सघनि ऐं असीं उनखे चवंदासीं 0301-2196-851 ते अवां खां कॉल करे पुछी बि सघनि था नुस्ख़ो
0: बिल्कुलु जैतून जो तेल जेको आहे सो मशहूरु हूंदो आहे हिन में जैतून जे तेल में ॿ क़िस्म जा तेल ईंदा आहिनि हिकिड़ो ईंदो आहे मालिश जे हवाले सां जेको ऐं ॿियो ईंदो आहे यानी पीअण जे हवाले सां तव्हां कंहिंखे बि कंहिं सुठे मेडिकल स्टोर वारे खे या पंसार वटि वेंदो या कंहिं वॾे सुपर जनरल स्टोर में
1: मतिलबु खाइण में खाधे पीते में
0: इस्तेमालु कजे थो एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल उनखे चइबो आहे एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल ॿाहिरिनि मुल्कनि जा बि अचनि था असां वटि जा पाकिस्तान जा बि अचनि था कहिड़ो बि मिली वञे त वधीक उहो बहितरु आहे एक्स्ट्रा वर्जन ऑयल जे नाले सां यानी जेको पीअण जो या खाइण जो तेल इस्तेमालु कबो आहे उहो चमचो हिकिड़ो ऐं चमचो सिंधी माखी जो चमचो जेको आहे सो लीमे जे रस जो इहे तव्हां पाणी में जेको आहे सो नीम गरम पाणी में विझी करे ऐं इस्तेमालु कराईंदो पेशंट खे त अल्ला ताला जी महिरबानी सां चाहे किडनी स्टोन आहे चाहे गाल ब्लेडर स्टोन आहे उहा जेको आहे सो बिल्कुलु ख़तमु थी वञे थी
1: तमामु बहितरीन सामिन खे ॿुधाईंदा हलूं प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 तव्हांजी ख़िदमत में लाइव पेश कयो पियो वञे डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु सिंध जो मशहूरु मरूफ़ डॉक्टर असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहे जेको मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾेई रहियो आहे डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि डॉक्टर साहिबु तव्हांजो तमामु घणियूं महिरबानियूं डॉक्टर साहिबु अवां आख़िर में असांजे मौज़ ॿुधंदड़नि खे कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदा साईं
0: जी सर बिल्कुलु काल जे तरफ़
1: हा काल हिकिड़ी शामिलु कंदा हलूं था पहिरीं ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु हूंदो पर ही बि मिस कॉल थी चुकी आहे तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदासीं
0: जेको आहे सो पैगाम इहो ई हूंदो आहे त 5 वक़्त जी निमाज़ जी पाबंदी ज़रूरी आहे सदिको ज़रूरु ॾींदा कयो ऐं सदिके सां जेको आहे सो हर बीमारी हर तकलीफ़ दूरि थिए थी ऐं उनखां अलावा जेके बीमार आहिनि उन्हनि जे लाइ या हॉस्पिटलाइज़ आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो या जेके बे औलाद आहिनि उन्हनि जे लाइ ज़रूरु दुआ कंदा कयो ऐं असांखे ज़रूरु दुआ में यादि कजो वॾी महिरबानी
1: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोतली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि 0301-2196-851 अव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबतो करे सघो था काल जो सिलसिलो अञा बि जारी आहे डॉक्टर साहिब पैगाम पंहिंजो ॾेई चुको आहे पर असांजी कोशिशि हूंदी आहे त वरी बि जेको काल करे थो भला उनखे डॉक्टर साहिबु शामिलु कंदा हलंदो हिकु बि काल शामिलु करे छॾियूं पिया हली करे अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
1: साईं मुंहिंजा केरु साहिब पियो ॻाल्हाए जी जी भली कार चवंदा अली नवाज़ साहिब खे ठीकु आहियो त भई ठीकु आहे मुंहिंजा साईं
3: तव्हां ख़ुशि आहियो
1: दुआ आहे अलहमदुल्ला छा पुछंदा साईं डॉक्टर साहिब खां
3: डॉक्टर
1: साहिब पुछंदा
2: गैस्ट्रिक पेन भी पइजी सघे थो सो इहो चवंदासीं हिकु त जेको आहे सो जीरो सौंफ अधु चमची रोज़ाना राति जो पाणी में काढ़े ऐं उहो काढ़ो पीअनि इनशा ताला फ़र्क़ु पइजी ईंदो वरना रूबरू क्लिनिक ते सुभाणे मां क्लिनिक ते हूंदुसि त रूबरू ॾेखारे वञनि त वधीक बहितर
1: तमामु घणी महिरबानी डॉक्टर साहिबु सामिन डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर आहे गुर्दे जी पथरी आहे मसाने जी पथरी आहे पिते जी पथरी आहे नक जी हॾी वधियल आहे गले जा गुदूद वधियल आहिनि का बि बीमारी लाइलाज न आहे अव्हां खे पुराणे खां पुराणो स्किन जो मसइलो आहे जीअं 2022 खां वठी असीं अक्सर ज़िकिर कंदा आहियूं त स्किन जा तमामु घणा इशूज़ आया ऐं काफ़ी मरीज़ अहिड़ा जिन खे 5 साल 4 साल 3 साल थिया आहिनि ऐं उन्हनि खे 10 साल थिया आहिनि स्किन जा प्रॉब्लम्स आहिनि ऐं उहे सिहतयाब नथिया थियनि पिया तव्हां कुझु चवणु चाहियो था डॉक्टर साहिबु
2: माशाल्लाह काफ़ी सारा पेशंट्स जेको असां डील कया आहिनि ऐं अलहमदिल्ला काफ़ी सारा उन्हनि खे शिफ़ायाब थी चुकिया आहिनि
1: तमामु बहितरीन त जल्दी खणी 10 सालनि जो पेशंट आहे स्किन जो त उहे बि सिहतयाब थी वञनि था मरीज़ भले स्किन जो प्रॉब्लम आहे नक जी हॾी वधियल आहे गले जा गुदूद आहिनि अव्हां खे फालिज आहे जेके बिल्कुलु बि घुमी नाहिनि सघंदा या जिन खे संधनि जो सूरु जोड़नि जो सूरु जेके कुंदरक वारा आहिनि डॉक्टर साहिबु वटि अहिड़ा बि मरीज़ आया जेकी गाॾी मां लहंदा कोन हुया पर वक़्तु गुज़रण खां पोइ जॾहिं डॉक्टर साहिबु इलाजु शुरू कयो त उन्हनि जो इहा पोज़ीशन बीठी त माना उहे सिहतयाब थी विया ऐं पाण डॉक्टर साहिबु वटि ईंदा हुआ हिकु कॉलर जी तरफ़ ईंदासीं अस्सलाम वालेकुम जी अदा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए नज़ीर खोसो साहिब खे भली कार चवंदा बलोचिस्तान खां ॻाल्हायो पियो बलोचिस्तान किथां ॻाल्हायो पिया मुंहिंजा साईं अच्छा सोबतपुर बलोचिस्तान खां छा पुछंदा डॉक्टर साहिब खां वेबसाइट जे थ्रू पिया ॿुधो या आस पास में आया हो हिते सिंध में हलो माशाल्लाह तमामु बहितरीन ॿुधो एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो जी डॉक्टर
2: साहिबु भाउ जी महिरबानी असांखे बलोचिस्तान मां जेको असां कॉल कई आहे ऐं अधिक ज़रूरु ॿुधाईंदासीं खफ़गान जो सूरु या मेग्रीन पेन या अधु मथे जो सूरु जेके चवंदा आहियूं त इन हवाले सां जेके चवंदासीं त हिकु त असां वटि होम्योपैथिक में कामयाबु इलाजु मौजूदु आहे जेकॾहिं काफ़ी दफ़ा ॿिए हंधि इलाजु कराए चुको आहे फ़र्क़ु न पियो आहे त असां वटि मेहरापुर जेको आहे सोचनि ऐं रूबरू ॾेखारे दवा वठी सघनि था छो जो काफ़ी सारा बलोचिस्तान जा दोस्त असां वटि ईंदा
1: आहिनि जीअं पहिरियां ईंदा हुआ झलमंग सी बलोचिस्तान खां ओस्ता मोहम्मद बलोचिस्तान खां त हीअ बि उतां जो साईं आहे
2: असां वटि पेशंट बलोचिस्तान जा मौजूदु आहिनि जेके कोर्स ते आहिनि ऐं ईंदा आहिनि बहरहाल अधिक ॿुधाईंदासीं त उस्ता कुद्दूस हिकिड़ो ख़मीरा माजून ईंदो आहे फ़िलहालु जेकॾहिं असां नथा अची सघनि त उहो तव्हां वठी करे अधु चमची सुबुह शाम नेराने इस्तेमालु करे सघंदा ऐं ख़सख़स राति जो अधु चमची खीर में काढ़े ऐं उहो पीअण इनशा ताला उन सां बि अलाह ताला उनखे काफ़ी शिफ़ा ॾींदो
1: तमामु घणी महिरबानी सामिन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऐं इस्पताल नवाब शाह डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि 0301-9196-8151 डॉक्टर साहिब जो नंबर आहे डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि बाबति ॼाण ॾींदा आहिनि मालूमात ॾींदा आहिनि असांजे मौज़ूज़ ॿुधंदड़नि खे ऐं अलाह ताला जे हुकुम सां उहे मरीज़ सिहतयाब थी वञनि था का बि बीमारी लाइलाज न आहे अव्हांखे कॾहिं बि मायूस न आहे थियणो मथे जो सूरु हुजे अधु मथे जो सूरु आहे इन खां अलावा तिरी वधी वञे थी हेपाटाइटिस बी आहे सी आहे जिगर जूं ॿियूं बीमारियूं आहिनि उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि जंहिंजो कदु नंढो आहे औरतुनि या मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो डॉक्टर साहिबु कामयाबु इलाजु कनि था इन ते प्रोग्राम जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणे जे तरफ़ ई वञे पियो पर इन खां पहिरियां असां हिकिड़ी ॻाल्हि अञा प्रोग्राम में शामिलु कंदा हलूं था ॾिसूं किथां जो कॉलर हूंदो अस्सलाम वालेकुम
4: औलाद
1: नथी थिए पई डॉक्टर साहिबु ॿुधाईंदो ॿुधो या हिते लाइन ते रहो ॿुधो जी डॉक्टर साहिबु
2: बिल्कुल देखी चवंदासीं त हिक त जेके हुन जो टेस्टूं मुकमल आहिनि थियल त उहे रूबरू खणी अचनि ऐं ॾेखारे हुन जो इलाज बहिराल होम्योपैथिक में मौजूदु आहे ऐं हुनजी जॾहिं पेशेंट साम्हूं
1: जी
3: साईं
1: तव्हां एफ एम ॿुधो या वरी डॉक्टर साहिब खे ॿुधो
2: बिल्कुल मां इलाज मौजूदु आहे ऐं अव्हां रूबरू अचो ऐं अव्हां टेस्टूं खणी अचो तव्हांखे दवा ॾींदासीं ॾियण जी ज़ात रब ताला जी आहे शिफ़ा उहो ई ॾींदो आहे पर असां वटि होम्योपैथिक में अहिड़ा केसिस काफ़ी असां डील कया आहिनि जिन सां अलाह ताला जी महिरबानी सां औलाद थी वियो आहे चाहे 5 साल जो हुजे चाहे 20 साल जो हुजे उनखे औलाद थी वियो आहे
1: बिल्कुलु यकीन मां सम्झां थो अधे डॉक्टर साहिब जो सवाल जो जवाबु ॿुधी वरितो हूंदो जेके तव्हांजो रिपोर्टूं आहिनि जेके तव्हांजूं टेस्टूं आहिनि उहे खणी करे तव्हां डॉक्टर साहिब खे रूबरू ॾेखारियो अलाह सांजी ज़ात ॾियण वारी आहे सामिन प्रोग्राम जो बि वक़्तु पंहिंजे पुॼाणी जे तरफ़ ई वञे पियो डॉक्टर साहिबु हर अरबा ख़मीस जुमो छंछरु आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि 0301-2196-851 असांजो नंबर आहे लाइव कॉल जो इन खां अलावा डॉक्टर साहिब जो बि साॻियो ई नंबर आहे तव्हां कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहिब सां राबितो करे सघो था जॾहिं बि दुआउनि जे लाइ हथु खणो असांखे पंहिंजे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो ॿिए प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान अलाह वाही

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
1: के गार्जियन ए वायदे लाए धमकियन सा चुकाए न तो सकजे आरजी जगबंदी जो को भी फायदो न पे होते। वफाकी हुकूमत जे मुल्क में महंगाई 38% ताईं घट करण जी दावा, तरक्की जी शरह हदफ खां घट थियण जो एतराफ़, पर ॾही दाणे जा ज़खीरा बि मुस्तहकम हुअण जी दावा। वफाकी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त चैलेंजेस बावजूद मईशत सुठी कारकरदगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मईशत जो खातो 452 अरब $10 करोड़ थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़खीरा बि 17 अरब $10 करोड़ आहिनि। मुआशी तरक़ी जी शरह बि 3.7% रही। हिते जी सूरत हाल ठीक हुजे हा त 4% ताईं तरक़ी वारी शरह हासिल करे वञू हा। मालियाती खसारो 0.7% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.79% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾियुनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.1% रही आहे। सिंध में पाणी जे शदीद बहरान ते वॾे वज़ीर मुहम्मद अली शाह वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ खे ख़त लिखी छॾियो। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिबि पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो आहे त इसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी कोट बर्दाश्त करे पियो। सिंध में पाणी कोट दौरान डैम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखी पंजाब खां पहिरीं थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिबि पाणी मिलणु घुर्जे। पंजाब चश्मा जहलम केनाल समेत फ्लड केनाल ज़रिए पाणी खणी रहियो आहे। गुज़िरियल साल हिन सीज़न में गुडू वटि 1,35,000 क्यूसिक पाणी मिलियो। हाणे रुगो 75,000 क्यूसिक पाणी मिली रहियो आहे। सिंध सां गॾु बलोचिस्तान बि पाणी कोट सबबि मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी कोट आहे त बराबरी जी बुनियाद ते विरहायो वञे। सिंध ऐं बलोचिस्तान में पाणी जी शदीद खोट वारो मामिलो क़ौमी असेंबली पहुची वियो। पीपल्स पार्टी MNS जो सिंध ऐं बलोचिस्तान खे घुर्ज मूजिबि पाणी ॾियण जो मुतालबो। पाणी मामलनि वारे वफ़ाकी वज़ीर मुइन भट्टू जवाब ॾींदे चयो त सिंध 10% खां वधीक ऐं पंजाब 17% पाणी कोट खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पाणी बाबति इस्लाम में थियल फ़ैसलनि ते अमल थी रहियो आहे। इन्हनि फ़ैसलनि में सिंध बि शामिल हुई। PPMNA नवीद कमर चयो त इसा जा अंग अखर सिंध हुकूमत रद्द कया आहिनि। सिंध में फसल पोखण लाइ पाणी नाहे। इसा कानून खां मथां फ़ैसला कया आहिनि। शाज़िया वरी चयो त वफ़ाकी वज़ीर जा अंग अखर दुरुस्त न आहिनि। इसा पाणी वारे 1991 ठाह ते अमल दरामद न पई करे।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असुर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569 0300-3855-69

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।

0: रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-1800-003
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347

0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज जीए एफएम 94।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
0: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो जी एफ एम 94।

0: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान की बहरिया फजाइया दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर खत्म थी चुकी है। ईरान अच्छो झंडो फड़काए शिकस्त तस्लीम करे सके तो इहो भी मुमकिन आए तो जल्द तारीखी वायदो थी वने। ईरान ते हमलन जो जिम्मेवार अमरीका का शिकस्त तस्लीम करे सके तो इहो भी मुमकिन आए तो जल्द तारीखी वायदो थी वने। ईरान ते हमलन जो जिम्मेवार अमरीका हों तो नतीजा भी अमरीका ए संदन सहूलतकारन के भोगना पवंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के धमकियन ते ईरान जो रद्द अमल। ईरान के नायब परडेही वजीर कासिम गरीबाबादी चयो आए त ईरान के गालियन ए माहदे लाए धमकियन सा झुकाए नतो सकजे। आरसी जंगबंदी जो को भी फायदो न पियो थे।

0: वफ़ाक़ी हुकूमत जी 17,500 अरब रुपयनि खां वधीक जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। बजट जी मंज़ूरी लाइ वफ़ाक़ी काबिना जो इजलास बि सुभाणे तलब। पघारनि ऐं पेंशन में वाध ऐं टैक्स रेवेन्यू जो हदफ़ 15,267 अरब रुपया मुक़ररु करण जो इम्कान। सोलर पैनल्स, स्टेशनरी ऐं स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली न करण जो फ़ैसिलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स जी शरह में 25% ताईं वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स पुराणी शरह बरक़रार रहंदी। रिवायती ॿारनि ते हलंदड़ गाॾियुनि कार्बन लेवी लॻाइण जी तजवीज़। मक़ामी सतह ते तयार थियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्तियूं थियण जी उमीद। नई बजट में पेट्रोलियम लेवी मां 1,727 अरब रुपया वसूल करण जो प्लान। कर्ज़नि जो व्याज भरण लाइ 7,824 अरब ऐं दिफ़ाई शोबे लाइ लॻभॻ 3,000 अरब रुपया रखण जो इम्कान। एक्सपोर्ट जो हदफ़ 32.5 अरब डॉलर ऐं इम्पोर्ट जो खातो 70 अरब डॉलर लॻायो वियो। ख़िदमतनि जे शोबे में 11 लख, सनअती शोबे में 5 लख ऐं ज़री शोबे में 4 लख नौकरियुनि जो हदफ़ मुक़ररु।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माशाल्लाह फौजी पाइप फैक्ट्री, नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर। असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप। ॾेढ 2, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज़ टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत। प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार। मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला। सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो। एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज। खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स। अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453।
5: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
5: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
6: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।
7: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर वधीक राबते जे लाइ 0383 85 569 0300 33 8 55 69।
8: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ, एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा

0: यार इदारो इर्शाद ऑटोज ए होंडा शोरूम मेहरा पर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इर्शाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इर्शाद ऑटोज हालानी रोड मेहरा पर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई।
1: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320432 0242460100।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वफाकी हुकूमत जी 17,500 अरब रुपए का वधीक जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। बजट जी मंजूरी लाए वफाकी काबीना जो इजलास भी सुभाणे तलब। पगार ने पेंशन में वात ए टैक्स रेवेन्यू जो हदफ 15,200। हुकूमत जी 17,500 अरब रुपए का वधीक जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। बजट जी मंजूरी लाए वफाकी काबीना जो इजलास भी सुभाणे तलब। पगार ने पेंशन में वात ए टैक्स रेवेन्यू जो हदफ 15,267 अरब रुपया मुकर्रर करण जो इम्कान। सोलर पैनल स्टेशनरी ए स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में कें भी किस्म की तब्दीली न करण जो फैसलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाड़ियों ते सेल्स टैक्स की शराह में 25% ताई वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाड़ियों ते टैक्स की पुरानी शराह बरकरार रहंदी। रिवायती बारन ते हलंदड़ गाड़ियों ते कार्बन लेवी लगाने की तजवीज। मकामी सतह ते तैयार थियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्तियों थियण की उम्मीद। नई बजट में पेट्रोलियम लेवी मां 1,727 अरब रुपया वसूल करण जो प्लान। कर्जन जो ब्याज भरण लाए 7,824 अरब ए दिफाई शोबे लाए लगभग 3,000 अरब रुपया रखण जो इम्कान। एक्सपोर्ट जो हदफ 32.8 अरब डॉलर ए इम्पोर्ट जो खातो 70 अरब डॉलर लगायो वियो। खिदमतन जे शोबे में 11 लख, सनअती शोबे में 5 लख ए ज़रई शोबे में 4 लख नौकरियन जो हदफ मुकरर।

वफाकी बजट में 220 अरब रूपयनि जा नवां टैक्स लॻाइण जी तजवीज़। पेट्रोलियम शयुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू करण जो बि इम्कान। स्टील सेक्टर लाइ फिक्स सेल्स टैक्स निज़ाम आणण जो फ़ैसिलो। ॿारनि जे फार्मूला खीर, केचअप, घी, खाजरो तेल, चांहि पत्ती, खंड, खुश्क खीर ते सेल्स टैक्स जी वसूली लाइ क़ीमतूं प्रिंट करण लाज़मी करार। वफ़ाक़ी हुकूमत मुल्क में ग़ुर्बत ऐं बेरोज़गारी में वाधि जो एतिराफ़ करे वरितो। गॾोगॾु अवाम जी सालियाना आमदनी में वाधि जी बि दावा। तरक़ी जी शरह हदफ़ खां घटि थियण जो एतिराफ़। वफ़ाक़ी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त चैलेंजिस बावजूद मईशत सुठी कारकर्दगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मईशत जो खातो 452 अरब 10 करोड़ डॉलर थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़ख़ीरा बि 17 अरब 10 करोड़ डॉलर आहिनि। मुआशी तरक़ीअ जी शराबी 3.5% रही। खिते जी सूरत हाल ठीक हुजे हा त 4% ताईं तरक़ी वारी शरह हासिल करे वञू हा। मालियाती खसारो 0.5% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे 2.5% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾियनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.5% रही आहे।

सिंध में पाणी जी शदीद बोहरान ते वॾे वज़ीर फहद अली शाह वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ के ख़त लिखी छॾियो। पाणी कोट बराबरी जी बुनियाद ते विरहाइण ऐं सिंध खे ज़रूरत मूजिब पाणी फराहम करण जो मुतालबो। आबपाशी वारे वज़ीर जाम ख़ान शोरो चयो आहे त इरसा सिंध सां नाइंसाफ़ी करे रही आहे। सिंध खे 41% घटि पाणी मिली रहियो आहे। पंजाब रुगो 10% पाणी कोट बर्दाश्त करे पियो। सिंध में पाणी कोट दौरान डैम भरण जो कहिड़ो जवाज़ आहे? सिंध में पोखी पंजाब खां पहिरीं थींदी आहे। सिंध खे घुर्ज मूजिब पाणी मिलणु घुर्जे। पंजाब चश्मा जहलम केनाल समेत फ्लड केनाल ज़रिए पाणी खणी रहियो आहे। गुज़िरियल साल हिन सीज़न में गुडू वटि 1,35,000 क्यूसिक पाणी मिलियो। हाणे रुगो 75,000 क्यूसिक पाणी मिली रहियो आहे। सिंध सां गॾु बलोचिस्तान बि पाणी कोट सबबि मुतासिर थी रहियो आहे। पाणी कोट आहे त बराबरी जी बुनियाद ते विरहाई वञे।

सिंध बलूचिस्तान में पानी की शदीद खोट वो मामलो कौमी असेंबली पहुंची वो पीपल्स पार्टी एमएनएस जो सिंध बलूचिस्तान के घुर्ज मौजे पानी डेण जो मुतालबो पानी मामलन वाले फाकी वजीर मोइन वट्टू जवाब दींदे सिंध 10% का पंजाब 17% पानी खोट के मुंह डेई रो पानी बाबत इर्सा में थियल फैसलन ते अमल थी रो इन फैसलन में सिंध भी शामिल हुई पीपीएमएनए नवीद कमर इर्सा जा अंग कर सिंध हुकूमत रद्द कया सिंध में फसल पोखण लाय पानी ना इर्सा कानून का मथा फैसला कया शाजिया मरी वफाकी वजीर जा अंग अखर दुरुस्त ना इर्सा पानी वाले 1991 ठा अमल दरामद न पई करें।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु राति ईरान मथां ॿीहर ताक़तवर हमलनि ऐं जल्द तेहरान जे तेल ऐं गैस ज़खीरनि ते कब्ज़ो करण जी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तेहरान सां बि उहो ई कंदासीं जेको वेनेज़ुएला सां कयो हो। ईरान जी खारगट बेट ते कब्ज़े खे बहितर समुझा थो। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे ट्रंप चयो त ईरान जी बहरिया, फज़ाई ऐं दिफ़ाई सलाहियत मुकमल तौर ख़तम थी चुकी आहे। ईरान अछो झंडो फड़काए शिकस्त तस्लीम करे इहो बि मुमकिन आहे त जल्द तारीख़ी मुआदो थी वञे। ईरान ते हमलनि जो ज़िमेवार अमरीका हूंदो, नतीजा बि अमरीका ऐं संदनि सहूलतकारनि खे भोगणा पवंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी धमकियुनि ते ईरान जो रद्द अमल, ईरान जे नायब परडेही वज़ीर कासिम ग़रीबाबादी चयो आहे त ईरान खे ॻाल्हियुनि ऐं मुआहिदे लाइ धमकियुनि सां झुकाए नथो सघिजे। आरज़ी जंगबंदी जो को बि फ़ाइदो नाहे।

चमड़ी वाहन एलर्जी कॉस्मेटिक वचड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज का इशा के नमाज तई हर आचर वगे का रात अठ वगे तई मरीजन जो इलाज कंदा एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरा के राबते के लिए 0385 579 0299।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0350 31 तौकीर अहमद 0 16।
1: ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोर। नईं मोटरसाइकिल जी बनीअ जे मबाहे साइकिल जी भेट ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। ऑटोस ते मोटरसाइकिल जी करायो ट्विटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जे मोटरसाइकिल जी त मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आटी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 2023

0: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ 2 ॾींहनि में। डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर ॾींहं जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अॼु राति ईरान वटां ॿीहर ताक़तवर हमलनि ऐं जल्द तेहरान जे तेल ऐं गैस ज़खीरनि ते कब्ज़ो करण जी धमकी ॾेई छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तेहरान सां बि उहो ई कंदासीं जेको वेनेज़ुएला सां कयो हो। ईरान जी खारक भेट ते कब्ज़े खे बहितर समुझा थो। अमरीकी टीवी खे इंटरव्यू ॾींदे ट्रंप चयो त ईरान जी बहरिया, फज़ाइया ऐं दिफ़ाई सलाहियत मुकमल तौर ख़तम थी चुकी आहे। ईरान अछो झंडो फड़काए शिकस्त तस्लीम करे इहो बि मुमकिन आहे त जल्द तारीख़ी मुआदो थी वञे। ईरान ते हमलनि जो ज़िमेवार अमरीका हूंदो। नतीजा बि अमरीका ऐं संदनि सहूलतकारनि खे भोगणा पवंदा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जी धमकियुनि ते ईरान जो रद अमल। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीबाबादी चयो आहे त ईरान खे ॻाल्हियुनि ऐं माहिदे लाइ धमकियुनि सां झुकाए नथो सघजे। आरज़ी जंगबंदी जो को बि फ़ाइदो नाहे।

वफाकी हुकूमत जी 17,500 अरब रुपए का वधीक जी बजट सुभाणे पेश कई वेंदी। बजट जी मंजूरी लाए वफाकी काबिना जो इजलास भी सुभाणे तलब। पगार ऐं पेंशन में वाध ऐं टैक्स रेवेन्यू जो हदफ 15,260 अरब रुपया मुकर करण जो इम्कान। सोलर पैनल स्टेशनरी ऐं स्टॉक मार्केट ते लागू टैक्सेस में कंहिं बि क़िस्म जी तब्दीली न करण जो फ़ैसिलो। इम्पोर्टेड इलेक्ट्रिक गाॾियुनि ते सेल्स टैक्स जी शराब में 25% ताईं वाध जो इम्कान। हाइब्रिड गाॾियुनि ते टैक्स जी पुराणी शराह बरकरार रहंदी। रिवायती वारनि ते हलंदड़ गाॾियुनि ते कार्बन लेवी लॻाइण जी तजवीज़। मक़ामी सतह ते तयार थियल इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्तियूं थियण जी उमीद। नई बजट में पेट्रोलियम लेवी मां 1,727 अरब रुपया वसूल करण जो प्लान। कर्ज़नि जो व्याज भरण लाइ 7,824 अरब ऐं दिफ़ाई शोबे लाइ लॻभॻि 3,000 अरब रुपया रखण जो इम्कान। एक्सपोर्ट जो हदफ 28.8 अरब डॉलर ऐं पोर्ट जो खातो 70 अरब डॉलर लॻायो वियो। ख़िदमतनि जे शोबे में 11 लख, सनअती शोबे में 5 लख ऐं ज़रई शोबे में 4 लख नौकरियुनि जो हदफ मुक़ररु।

0: वफाकी बजट में 200 रुपयनि जा नवा टैक्स लॻाइण जी तजवीज़। पेट्रोलियम शयुनि ते फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू करण जो बि इम्कान। स्टील सेक्टर लाइ फिक्स्ड सेल्स टैक्स निज़ाम आणण जो फ़ैसिलो। ॿारनि जी फार्मूला खीर, केचप, गिह, खाजरो तेल, चांहि पती, खंड, खुश्क खीर ते सेल्स टैक्स जी वसूली लाइ क़ीमतूं प्रिंट करण लाइ लाज़मी करार। वफ़ाक़ी हुकूमत मुल्क में ग़ुर्बत ऐं बेरोज़गारी में वाध जो एतिराफ़ करे वरितो। गॾोगॾु अवाम जी सालियाना आमदनी में वाध जी बि दावा। तरक़ी जी शरह हदफ़ खां घटि थियण जो एतिराफ़। वफ़ाक़ी हुकूमत इक़्तिसादी सर्वे जारी करे छॾियो। नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त चैलेंजेस बावजूदि मईशत सुठी कारकर्दगी ॾेखारी आहे। पाकिस्तानी मईशत जो खातो 452 अरब $10 करोड़ थी वियो आहे। पाकिस्तान वटि नाणे जा ज़ख़ीरा बि 17 अरब $10 करोड़ आहिनि। मुआशी तरक़ी जी शरह 3.7% रही। खिते जी सूरतहाल ठीक हुजे हा त 4% ताईं तरक़ी वारी शरह हासिल करे वञू हा। मालियाती खसारो 0.7% आहे। प्राइमरी बैलेंस सरप्लस आहे। ज़रई शोबे में 10.79% तरक़ी कई। पेट्रोलियम सेक्टर 5% तरक़ी कई। वॾियुनि सनअतनि जी तरक़ी जी शरह 6.1% रही आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।